0: मिलने की खुशी नहीं होती, बल्कि ये हमारी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। हमें अपनी जीत पर गर्व जरूर करना चाहिए, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्ची जीत वही है जो हमें विनम्र बनाए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। इसलिए हर सफलता का आनंद लें और अगली चुनौती के लिए पूरे उत्साह से तैयार रहें।
1: ये था आज का हमारा अनमोल विचार और अब प्रस्तुत है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। शुरुआत करते हैं मातृवंदना से।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है अग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज बात करते हैं नींबू वर्गीय वृक्षों में जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी के लक्षणों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गंधक की। इसकी कमी के लक्षण नई नई वृद्धि में प्रकट होते हैं। पौधे हल्के हरे से पीले पड़ने लगते हैं। गंधक की कमी का असर शुरू शुरू में जो नींबू वर्गीय फलों की वृद्धि होती है उस समय सबसे ज़्यादा होता है। गंधक के बाद जस्ता भी एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी कमी का प्रभाव नींबू वर्गीय फलों में पड़ता है। जस्ते की कमी से जो नई पत्तियां होती हैं उनका विकास सबसे पहले प्रभावित होता है जो बाद में पीली और सूख जाती हैं। पत्तियों का छोटा गुत्थे का स्वरूप ले लेना, समय पूर्व पत्तियों का गिरना, पुरानी पत्तियों की शिराओं पर सफ़ेद पीली पत्तियां व ऊपर की पत्तियों का सफ़ेद होना जस्ते की कमी के कुछ सामान्य लक्षण हैं। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियां असामान्य रूप से संकरी व सीधी खड़ी रहती हैं व आकार में छोटी हो जाती हैं। इन पत्तियों का किनारा बहुत नुकीला हो जाता है। जैसे जैसे जस्ते की कमी बढ़ती जाती है पत्तियों पर इसका असर और साफ दिखता है। टहनियाँ बहुत पतली हो जाती हैं जो बाद में मर जाती हैं। जस्ते के बाद आइए बात करते हैं एक और सूक्ष्म पोषक तत्व लोहे के बारे में। पहले नई पत्तियों में अंतर शिराओं में सफ़ेद पीलापन प्रकट होता है जब लोहे की कमी होती है। फिर सभी खुली सतह पर क्लोरोसिस यानी ये सफ़ेद पीलापन फैलता जाता है। पत्तियां सूखने के पश्चात कुछ अवस्था में पूरी तरह से रंगहीन भी हो जाती है व सतह पूरी तरह से खुरदुरी हो जाती है। गंभीर अवस्था में पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है, पत्तियां कमज़ोर व पतली हो जाती हैं व गिर जाती हैं। लोहे की कमी से पेड़ों का जो ऊपरी भाग होता है वो सूख जाता है और मर जाता है व नीचे सामान्य रूप से पत्तियों का विकास होता रहता है। लोहे के बाद आइए अब देखें मैग्नीस की कमी के क्या लक्षण होते हैं नींबू वर्गीय फलों में। पीले धब्बे लिए शिराओं में हरी व पत्तियों के उत्तक में पीलापन सफ़ेदपन पहले पुरानी पत्तियों में प्रकट होता है, फिर अन्य पत्तियों में ये लक्षण धीरे धीरे फैल जाते हैं। मैग्नीस की कमी से तना पीला हरा व अक्सर कड़ा हो जाता है। नई पत्तियों में हल्की पीली पृष्ठभूमि में हरी शिराएं मकड़ी के जाले के समान दिखाई देती है। मैग्नीस की कमी से पत्तियां अक्सर आकार में बदलाव नहीं करती लेकिन संक्रमित पत्तियां पेड़ से गिर जाती हैं। तांबे की कमी का भी असर नींबू वर्गीय फलों में होता है। सिरे के तंतु सूखने से इनकी मृत्यु हो जाती है। पत्तियों का रंग हल्का हो जाता है, कैरोटीन व अन्य पिगमेंट कम हो जाते हैं। असामान्य फैलाव लिए हुए बड़ी गहरी हरी पत्तियां, फल देने वाले टहनियों की पत्तियों के बीच की शिरा का पीली पड़ जाना आदि तांबे की कमी के लक्षण हैं। जहां तक मॉलिब्डनम का सवाल है, पत्तियों का हल्का पीला हो जाना यानी क्लोरोसिस इसका प्रमुख लक्षण है। पत्तियों का विकास रुक जाता है, पत्तियों के बढ़ने के साथ साथ पीले धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं। अधिक गंभीर अवस्था में ये लक्षण फल पर भी आ जाते हैं। बड़े असामान्य भूरे पीले धब्बे और कभी कभी रंगहीन धब्बे फलों पर विकसित हो जाते हैं, साथ ही गूदे पर भी इसका असर हो

0: बिकता है। बोरोन की कमी से पौधों के ऊपर की पत्तियों के बीच में गांठ व अंत में गांठ छोटे हो जाते हैं, प्राय पत्तियां काली होकर मर जाती है। जड़ें छोटी रह जाती हैं और उनकी दीवार मोटी हो जाती है। पौधे छोटे गुच्छे के रूप में विकसित हो जाते हैं। फूलों का विकास व बीज उत्पादन कम या लगभग नहीं के बराबर होता है। तो किसान भाइयों, ये तो कुछ लक्षण रहे सूक्ष्म पोषक तत्वों के, जो कि प्रकट होते हैं नींबू वर्गीय फल वृक्षों में। लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया, इन लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही फलों पर इसका बुरा असर पड़ने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर बागान के मिट्टी की जांच करवाएं और जिन पोषक तत्वों की कमी है उनकी भरपाई करें।
1: आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से अभी आप सुन रहे थे अग्री टिप्स कार्यक्रम। सवेरे के 6 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। एनटीए ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने 8 अधिसूचनाएं जारी की। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। रद्द परीक्षाओं में औषधि निरीक्षक, सहायक प्रोफेसर, डिप्टी कलेक्टर, दंत चिकित्सक, सहायक अभियंता, सिविल जज, अपर लोक अभियोजक और वन अधिकारी समेत कई पदों की भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। सरकारी पॉलिटेक्निक में व्याख्याता, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक वन संरक्षक और अन्य प्रशासनिक तथा तकनीकी पदों की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं। अधिसूचनाओं में कहा गया है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय से त्वरित अदालत गठित करने का भी अनुरोध किया जाएगा। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य अधिक परिवारों तक पाइप से रसोई गैस पहुंचाना है। वर्तमान में देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। निर्वाचन आयोग ने देश की चुनाव व्यवस्था पर एक फैक्ट शीट जारी की है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभा तथा

0: विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र वैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग कराता है। आयोग ने बताया कि लगभग 1 अरब मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए गए हैं। ये फैक्ट शीट अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किए जाने के बाद जारी की गई। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए भी आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए मुकाबला काफी प्रमुख है। भारत के 2 मैचों में 3 अंक हैं और अगले दौर में पहुंचने के लिए उसे कम से कम ड्रॉ की जरूरत है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एमवी जॉली बॉय परसों 21 अगस्त को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा करेगा और अगले दिन 22 अगस्त को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से चलकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी भारत सीमा कल 20 अगस्त को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान की यात्रा करेगा और कल ही रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। एमवी कैमलवे परसों 21 अगस्त को रात्रि 9 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और अगले दिन 22 अगस्त को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम की वापसी करेगा। इस जलयान की यानी एमवी कैमलवे की अगली यात्रा होगी लिटिल अंडमान के लिए 23 अगस्त को श्री विजयपुरम से सवेरे 9 बजे। एमवी कालीघाट 22 अगस्त को सवेरे 7 बजे लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा करेगा। जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और 23 अगस्त को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटेगा और लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। अब आज होने वाली अन्य यात्राएं। एमवी रानी लक्ष्मी आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा। स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी होगी आज ही दोपहर बाद 2:30 बजे। एमवी बारह टांग आज दिन के 11:30 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए रवाना होगा और आज ही दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप की यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इस जलयान की वापसी यात्रा होगी आज ही दोपहर बाद 3:30 बजे। आज दोपहर बाद 2:30 बजे एमवी बम्बुका श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा करेगा और आज ही शाम 4:30 बजे शहीद द्वीप से

श्री विजयपुरम पहुंचेगा। स्वराजदीप के लिए एमवी ज्वाली बॉय आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और कल सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी।

अब सुनिए कल होने वाली कुछ यात्राओं की सूचना। एमवी बम्बुका कल सवेरे 6 बजे लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत के लिए रवाना होगा और कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर इन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम पहुंचेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6:15 पर शहीद द्वीप की यात्रा करेगा। जलयान श्री विजयपुरम से चलेगा और कल सवेरे 8:30 शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए इसकी वापसी होगी। कल सवेरे 6:15 पर एमवी रानी लक्ष्मी श्री विजयपुरम से स्वराजद्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराजद्वीप से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी होगी। ये था जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जलियानों का यात्रा कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय हुआ है सवेरे के 6:15। पेश है इंद्रधनुष कार्यक्रम।
1: इंद्रधनुष

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं सीमा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम को हम सजाएंगे तस्वीरों से। दोस्तों, तस्वीर हमारे जीवन की बहुत सुंदर यादों को संजोकर रखने का एक माध्यम है। एक तस्वीर में किसी व्यक्ति, स्थान या घटना की अनेक भावनाएं और यादें छिपी होती है। जब हम पुरानी तस्वीर देखते हैं तो बीते हुए समय की यादें फिर से हमारे सामने जीवंत हो जाती है।

तस्वीर केवल एक चित्र नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पलों की गवाही भी देती है। परिवार के साथ बिताए सुखद क्षण, मित्रों के साथ बिताया समय और किसी विशेष अवसर की यादें तस्वीरों के माध्यम से हमेशा हमारे पास रहती है।

आज के डिजिटल युग में तस्वीरें खींचना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल फोन और कैमरे की सहायता से हम अपने हर खास पल को सुरक्षित रख सकते हैं। तस्वीरें हमें अपने अतीत से जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों को हमारे जीवन और समय के बारे में जानने का अवसर देती है। इसलिए तस्वीरों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। एक अच्छी तस्वीर केवल सुंदर दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि उसके पीछे जुड़ी भावनाओं और यादों को भी व्यक्त करती है। सच कहा जाए तो तस्वीरें बीते हुए पलों को हमेशा के लिए यादों में जीवित रखने का अनमोल साधन है।

0: तो दोस्तों, इंद्रधनुष कार्यक्रम के आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष ये था तस्वीर शीर्षक पर केंद्रित हमारा इंद्रधनुष कार्यक्रम, प्रस्तुत कर रही थी सीमा। ये आकाशवाणी श्री विजयपुरम है। 6:30 हुए हैं। सुनते हैं रामचरित मानस गान की 355वीं कड़ी।

हनुमान के विदा हो जाने के बाद हर्षित भरत ने कुलगुरु को ये समाचार सुनाया कि श्री राम नगर में पहुंचने वाले हैं। राजमहल से ये संदेश तत्काल पूरी नगरी में फैल गया। चारों ओर कौशलपति की अगवानी की तैयारियां होने लगीं। दूध दही आदि मांगलिक वस्तुएं थाल में सजाकर नारियां श्री राम सीता और लक्ष्मण की आरती को निकल पड़ीं। कुलगुरु वशिष्ठ भाई शत्रुघ्न अन्य कुटुंबियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर भरत जी श्री राम की अगवानी के लिए निकल पड़ते हैं। सबकी आंखें आकाश की ओर लगी हैं जहां किसी भी क्षण पुष्पक दिखाई देगा। उधर पुष्पक में बैठे श्री राम अपने सहयोगियों को पवित्र नगरी अयोध्या की महिमा सुना रहे हैं। वो अयोध्या जो उनकी जन्मभूमि है, जो उन्हें वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। इस सुंदर नगरी के उत्तर में सरयू की पवित्र धारा बहती है, जिसके निर्मल जल में स्नान करने मात्र से प्राणी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। प्रभु का संकेत पाकर पुष्पक विमान अयोध्या नगरी के समीप उतर गया। लंका से अयोध्या तक की यात्रा पूरी हो गई। श्री राम ने जब विमान को अपने स्वामी कुबेर के पास लौट जाने को कहा, तो एक बार उस जड़ पदार्थ को भी विषाद की अनुभूति होती है। अपने स्वामी के पास लौट जाने का हर्ष भी श्री राम से बिछुड़ने की उदासी को नहीं छिपा सका।

अभी आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर के स्वर और सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में रामचरितमानस गान की 355वीं कड़ी। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:40 हुए हैं। सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत कुछ देशगान।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। समय सवेरे के 6:50। अब एक नज़र आज के मौसम के मिजाज पर।

कोलकाता स्थित मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया गया है कि अंडमान और निकोबार तटों के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसके बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा होने की और तूफानी रूप लेने की संभावना है, जिसके चलते मछुआरों को 22 अगस्त तक समुद्र में और अंडमान तथा निकोबार के तटों पर न जाने की सलाह दी गई है। कल सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कई भागों में हल्की मध्यम वर्षा होगी या फिर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे। ये था आज का मौसम का मिजाज। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों का विवरण। आज सवेरे 7:15 पर देशभक्ति फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम देश रागिनी होगा, जबकि इसी समय FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई की भेंट के तहत प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर सुना जा सकता है गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत साहित्य दर्पण कार्यक्रम में सुमन सिंह से काव्य पाठ। सुगम संगीत के तहत 8:30 पर कलाकार होंगे राधा सलूजा और जगमोहन। कार्यक्रम तराने सुहाने सुनेगा सुबह 9:00। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के तहत आज आप सुनेंगे राजेंद्र प्रसन्ना का हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन। सुबह 10:00 होगा कार्यक्रम गीत गाता चल। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनवाई जाएगी दिन के 11:00। 11:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। दोपहर 12:00 हम प्रसारित करेंगे तेलुगु के तहत महिलाओं के लिए कार्यक्रम वनितावाणी। मलयालम में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम शस्त्र लोगम। सुनिएगा दोपहर 1:10 पर महफिल कवाली कार्यक्रम और 1:30 पर होगा व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी, जिसमें पहले आप सुनेंगे हमारा लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम यूं ही गाते रहो। प्राइमरी चैनल पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें होंगी सूचनाएं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर चर्चा। आप सुनेंगे शाम 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, 4:40 पर कार्यक्रम विवरण और 4:45 पर कार्यक्रम बहारों की शाम। शाम 5:00 तमिल में होगा बच्चों के लिए कार्यक्रम सिरुवरपूंगा, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर चर्चा। 5:30 पर हम प्रसारित करेंगे बंगला कार्यक्रम। कृषि जगत कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा संध्या 6:00, जिसके तहत आप सुनेंगे डॉक्टर नागेश राम के साथ की गई बातचीत मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव। 6:30 पर सुना जा सकता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दर्द भरे नगमे।

मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं दी जाएंगी। संध्या 7:15 पर, 7:20 पर होगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:23 पर प्रसारित किया जाएगा विश्व मानवीय दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस पर चर्चाओं के अलावा कार्यक्रम गीतों भरी कहानी। रात्रि 8:00 कार्यक्रम चित्रपट संगीत, 8:30 पर रोजगार समाचार और गौरव गान का आप आनंद ले पाएंगे। रात्रि 10:00 होगा कार्यक्रम सरगम, जबकि इसी समय यानी रात्रि 10:00 FM 100.9 MHz पर आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। इन कार्यक्रमों के अलावा आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: क्रियार्थव्यवस्थां प्रवर्धयितुं भारतस्य नेतृत्वस्य अपि प्रशंसा कृता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायं तमिलनाडुराज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायै चेन्नई नगरं प्राप्स्यति। असौ श्वः चेन्नई नगरस्य समीपे कोवलम् इत्यत्र आयोज्यमाने दक्षिण भारतस्य मुख्यमन्त्रिणां सम्मेलने भागं ग्रहीष्यति। सम्मेलने तमिलनाडु, केरल, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी चेत्येतेषां प्रदेशानां मुख्यमन्त्रिणः भागं ग्रहीष्यन्ति। राष्ट्रिय परीक्षणाभिकरणेन स्वस्य परीक्षादलस्य व्यापकं पुनर्निर्माणं कृत्वा 600 पुरातनान् विशेषज्ञान् निष्कास्य तेषां स्थाने नूतनाः विशारदाः संगृहीताः। शिक्षामन्त्रालयेन सामाजिकान्तर्जाले पटले संसूचितं यत् परीक्षापत्राणां सूक्ष्मपरीक्षणं सुदृढं विधातुं एनटीए संस्थया चतुःस्तरीय प्रश्नपत्रपरीक्षणप्रणाली कार्यान्विता भविष्यति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघैः प्रवर्तमान वित्तवर्षस्य ऋणप्रदानक्षेत्रे तीव्रवृद्धिः अंकिता। मन्त्रालयानुसारं भारतीय रिजर्व बैंकस्य प्राथमिकता क्षेत्र ऋणप्रणाल्याः अन्तर्गतं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकानां प्रदर्शनम् अतीव उत्कृष्टमासीत्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व पश्चिमोत्तर प्रदेशेषु, पूर्व मध्य प्रदेशे तथा उत्तराखण्ड राज्ये कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7 बजे हैं जन सूचनाएं।

0: आज सवेरे स्थानीय मौसम कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 0.3 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। आज सवेरे 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता रही 90% और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 30.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय हुआ सवेरे 5:09 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:37। अब सुनिए एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी। दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन के 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 श्री विजयपुरम से दिन के 11:40 पर दिल्ली के लिए अपनी उड़ान संचालित करेगा। ये था एयर इंडिया से मिली जानकारी के अनुसार हवाई उड़ान संबंधी जानकारी।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की

0: पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: इसके साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई।

श्रोताओं, 7:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।

नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश भारती ने अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रशासन ने गुप्तापाड़ा और मक्का पहाड़ बांध के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए पात्र व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित किए हैं और खेल एवं युवा मामले विभाग राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 22 अगस्त से विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेगा।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश भारती ने अंडमान निकोबार प्रशासन में मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करने के बाद कल लोक निवास में उपराज्यपाल सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी से शिष्टाचार भेंट की। द्वीप समूह के विकास के लिए आवश्यक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने जल स्रोतों के विकेंद्रीकृत विकास की बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसके तहत पुराने स्रोतों का पुनरुद्धार और एकीकरण करने के साथ साथ नए बड़े जल निकायों का विकास किया जा रहा है। इसी क्रम में श्री विजयपुरम में जलापूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने डेस्कटॉप अध्ययन के आधार पर गुप्तापाड़ा बांध और मक्का पहाड़ बांध जैसे दो बड़े जलाशयों के विकास की योजना बनाई है। निरीक्षण के बाद इस प्रस्ताव को प्रशासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। एक औपचारिक कार्यक्रम में इन दोनों बांधों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू करने के लिए अंडमान लोक निर्माण विभाग और केंद्रीय जल आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रशासन की ओर से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज पर जागरूकता सह उन्मुखीकरण कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसके तहत कल मध्योत्तर अंडमान जिले के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में वर्चुअल जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। पर्यटन विभाग ने स्रोत अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज के बारे में जानकारी दी और छात्रों से अपनी विरासत को सहेजने, दस्तावेजीकरण करने और द्वीप समूह का रत्न बनने का आह्वान किया। आज द्वीपों के अन्य हिस्सों में भी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कला एवं संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2026-27 की सहायता अनुदान के लिए द्वीप समूह के पंजीकृत सांस्कृतिक संगठनों से आवेदन आमंत्रित करता है। इसके तहत प्रत्येक पात्र संगठन को 25,000 रुपये का सहायता अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक संगठनों का द्वीप समूह में पंजीकृत कार्यालय, कला संस्कृति, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के संवर्धन में सक्रिय तथा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि से कार्यरत होना चाहिए। इच्छुक संगठनों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन 15

0: सितंबर तक विभाग के निदेशक के पता पर जमा करने होंगे। आवेदन फॉर्म प्रशासन की वेबसाइट से डाउनलोड या कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी मुक्त भारत ऐप लॉन्च किया है। टीबी मुक्त भारत ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे टीबी से संबंधित जानकारी और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये ऐप उपचार संबंधी मार्गदर्शन, दवा लेने के नियम और फॉलोअप सहायता प्रदान करता है। इस एप्लीकेशन के तहत निक्षय मित्र पहल के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को आसान बनाना है। इस ऐप में खुशी आपकी ई संगिनी नाम से एक इंटरैक्टिव चैटबॉट भी शामिल है जिसे टीबी पर त्वरित, विश्वसनीय और उपयोगकर्ता के अनुकूल जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। मंत्रालय ने आम जनता से निक्षय मित्र के रूप में नामांकन कर जरूरतमंद टीबी रोगियों की मदद में योगदान देने के लिए टीबी मुक्त भारत ऐप डाउनलोड करने और इसका उपयोग करने का आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं।
1: गुड न्यूज फॉर द पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट लेकर आया है एक नई शुरुआत। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंडमान, फुल टाइम न्यूरोलॉजी एंड फुल टाइम गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक स्पेशलिस्ट सर्विसेज आर नाउ अवेलेबल अंडर वन रूफ। अब माइग्रेन, लकवा, मिर्गी, चक्कर, नसों की बीमारियां, याददाश्त की समस्याएं, ईईजी, ईएमजी और एनसीवी जैसी उन्नत जांचों के साथ साथ गर्भावस्था की देखभाल, बांझपन, इनफर्टिलिटी, पीसीओएस, महिलाओं की सभी सामान्य एवं जटिल समस्याओं का विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध है। स्वास्थ्य से समझौता न करें, विजिट हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक जुंगलिघट। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल करें 9933219444।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के उद्देश्य से तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए पात्र खिलाड़ियों और साहसिक गतिविधियों से जुड़े व्यक्तियों से नामांकन मांगे हैं। नामांकन केवल कॉमन अवार्ड्स पोर्टल के माध्यम से कल तक स्वीकार किए जाएंगे। ये पुरस्कार थल, जल और आकाश में साहसिक गतिविधियों में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए प्रदान किया जाता है। द्वीप समूह के पात्र आवेदकों से निर्धारित अवधि के दौरान अपना नामांकन जमा करने और पोर्टल पर उपलब्ध दिशा निर्देशों तथा पात्रता मानदंडों का पालन करने को कहा गया है। खेल एवं युवा मामले विभाग, शिक्षा विभाग के सहयोग से 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेलेगा भारत जीतेगा भारत विषय के तहत राष्ट्रीय खेल दिवस को खेल सप्ताह के रूप में मनाने जा रहा है। ये आयोजन श्रद्धांजलि, खेल और आगे बढ़ें के तीन प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। खेल एवं युवा मामले विभाग सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के तहत 22 अगस्त से विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेगा। इच्छुक प्रतिभागी और टीमें 21 अगस्त को सुबह 9 बजे तक संबंधित अधिकारियों के पास अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। विजेताओं को 29 अगस्त को शाम 4 बजे नेताजी स्टेडियम खेल परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रीय खेल दिवस के समारोह के हिस्से के रूप में उप शिक्षा कार्यालय विम्बरलीगंज की ओर से छात्रों के लिए आज से 25 अगस्त तक कन्यापुरम स्थित बहुउद्देशीय हॉल में अंडर 14 और अंडर 17 आयु वर्ग के इंटर स्कूल टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंडमान निकोबार राज्य ओलंपिक संघ की ओर से दक्षिण अंडमान जिला टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ये चैंपियनशिप 22 और 23 अगस्त को श्री विजयपुरम में आयोजित होगी। इच्छुक खिलाड़ी और टीमें निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से 21 अगस्त तक अपनी प्रविष्टियां जमा कर सकते हैं। अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र पशु चिकित्सा परिषद ने द्वीप समूह के सभी पात्र उम्मीदवारों से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद नई दिल्ली ने नीट 2026 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए 15%

अखिल भारतीय कोटा के तहत BBSC और AH डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कर दी है। पात्र उम्मीदवार भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा जारी समय सारणी और दिशा निर्देशों के अनुसार परामर्श प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानेश भारती ने अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। प्रशासन ने गुप्तापाड़ा और मक्का पहाड़ बांध के विकास के लिए स्वीकृति प्रदान की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए पात्र व्यक्तियों से नामांकन आमंत्रित किए हैं। और खेल एवं युवा मामले विभाग राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में 22 अगस्त से विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

मिडिम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम

नमस्कार आदाब, मैं आपकी अपनी प्रस्तोता फातिमा तहे दिल से आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, देश रागनी कार्यक्रम में हम सुनते हैं देशभक्ति के जज्बों से सराबोर गीत, जिसे सुनते ही हमारे दिलों में तिरंगे की शान और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाता है। इन्हीं जज्बातों और देश प्रेम की भावना को समर्पित इस कार्यक्रम के जरिए देशभक्ति गीतों की मधुर धुनें हमें अपने देश की मिट्टी की खुशबू से जोड़ती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले गीत से, एक ऐसा गीत जो हर भारतीय के दिल में देश के लिए गर्व की भावना भर देता है।

जब भी देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारे दिल की धड़कनें भी तिरंगे की लय में धड़कने लगा है। ये गीत हमें याद दिलाते हैं कि आज जो आज़ादी का हवा हम सांसों में भरते हैं वो किसी के त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस भारत को सींचा है, इस भारत माँ की रक्षा की है। इन वीरों को और माँ भारती को सलाम करता ये अगला गीत।

देशभक्ति का मतलब केवल देश के लिए मर मिटना नहीं, बल्कि देशभक्ति का मतलब अपनी ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई से समाज में अच्छाई फैलाना और अपने देश को बेहतर बनाने में अपनी ओर से छोटा छोटा सा योगदान देना भी है। क्योंकि हर व्यक्ति की छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही एक मजबूत और महान राष्ट्र का निर्माण होता है। और अब देशरागनी कार्यक्रम के आज के इस अंक को विराम देते हैं। इस

मिडिमीव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है सवेरे के 7:30। रोजाना की तरह हम पेश कर रहे हैं कार्यक्रम

जीवन की सुगंध का आनंद वही ले पाता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता हो। जी हाँ श्रोताओं, खिलना और बिखरना प्रकृति का नियम है और इनके बीच टूटने और बिखरने के बजाय महकते रहना हमारी काबिलियत पर निर्भर करता है। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी अपनी प्रस्तोता फातिमा। श्रोताओं, आज बुधवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026।

आज मैं अपनी कुछ रचनाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है, मुझको मेरे वतन से ज़्यादा नहीं, मुझको मिल जाए रोटी पानी यहीं। मुझको मेरे वतन से ज़्यादा नहीं, मुझको मिल जाए रोटी पानी यहीं। मेरे ऊपर है खुला आसमां, नीचे धरती है मेरी माँ जैसी। मेरे ऊपर है खुला आसमां, नीचे धरती है मेरी माँ जैसी। मेरे ओर जो है दो घाटियाँ, मेरी बहनों ने ली जैसे अंगड़ाइयाँ। मेरे ओर जो है दो घाटियाँ, मेरी बहनों ने ली जैसे अंगड़ाइयाँ। मेरा भाई भी होगा यहीं कहीं, मैं खोजूं उसे क्यों गली गली। मेरा भाई भी होगा यहीं कहीं, मैं खोजूं उसे क्यों गली गली। यह मेरा है गांव मेरी गली, यह मेरा है गांव मेरी गली। ये मेरी सखी मेरी पनाह भी यहीं, ये मेरी सखी मेरी पनाह भी यहीं। मेरे कर्मों का बंधन भी यहीं है कहीं, मेरे कर्मों का बंधन भी यहीं है कहीं। मेरे जुर्मों को माफ़ी मिली है यहीं, मैंने पढ़ना भी सीखा लिखना यहीं, मैंने पढ़ना भी

सीखा लिखना यहीं, माँ कहती थी देखो गांधी की तस्वीर, माँ कहती थी देखो गांधी की तस्वीर, नेहरू की टोपी शेरवानी की लकीर, माँ कहती थी देखो गांधी की तस्वीर, नेहरू की टोपी शेरवानी की लकीर, गांधी की छड़ी ने किया जो कमाल, गांधी की छड़ी ने किया जो कमाल, नहीं भूला जिसे अब तक सारा संसार, नहीं भूला जिसे अब तक सारा संसार। मेरी दूसरी रचना का शीर्षक है जीवन पथ है। जीवन पथ है, पथ से पहले पथ क्या था मालूम नहीं। जीवन पथ है, पथ से पहले पथ क्या था मालूम नहीं। सीधा पथ था आगे मोड़, सीधा पथ था पीछे मोड़, सीधा पथ था आगे मोड़, सीधा पथ था पीछे मोड़। पथिक तुम ही ठहर जाना, पथिक तुम ही ठहर जाना, रात गहन अंधेरी है, पथिक तुम ही ठहर जाना, रात गहन अंधेरी है, बाजुओं का साथ मगर, बाजुओं का साथ मगर, टेक कहाँ दिखती नहीं, बाजुओं का साथ मगर, टेक कहाँ दिखती नहीं। जीवन एक सखी पर बड़ी भेदी, जीवन एक सखी पर बड़ी भेदी, जीवन जैसे एक घुरघुरी, जीवन जैसे एक घुरघुरी, जीवन पथ है या एक कहानी, जीवन पथ है या एक कहानी, पट कथा या संक्षेप, जीवन पथ है या एक कहानी, पट कथा या संक्षेप, जीवन एक लेखा जोखा, जीवन एक लेखा जोखा, जीवन खेल तमाशा, जीवन एक लेखा जोखा, जीवन खेल तमाशा, जीवन या एक कौतूहल, जीवन या एक कौतूहल, कौन कहाँ है हम कहाँ हैं सब कहाँ हैं, कौन कहाँ है हम कहाँ हैं सब कहाँ हैं, जीवन जैसे एक घुरघुरी, जीवन पथ है, जीवन पथ है, जीवन पथ है। मेरी अंतिम रचना है, शीर्षक है चलो अंधेरा है दीपक जलाएं। चलो अंधेरा है दीपक जलाएं, चलो अंधेरा है दीपक जलाएं, चांदनी रात है मगर दिल के अंधेरों को मिटाएं, चांदनी रात है मगर दिल के अंधेरों को मिटाएं, चलना तो बहुत दूर है कदम से कदम मिलाएं, राह में कांटे बिछे हैं चलो मिलकर हटाएं, कभी न कभी तो वह सुबह आएगी, कभी न कभी तो वह सुबह आएगी, इन अंधेरी रातों को भी अपने गीत सुनाएं, चलो सुर मिलाएं, सुन के धुन बंसी की सब आ जाएं, है थका बदन है थका जहां, मीठा मीठा हम तुम कुछ बतियां आएं, है थका बदन है थका जहां, मीठा मीठा हम तुम कुछ बतियां आएं, चलो उन टहनियों को सहला आएं, गुंचे खिले खिले से बूंदों को टपका आएं, गुंचे खिले खिले से ओसों की बूंदों को टपका आएं, चलो उन आंसुओं को पोछ आएं, जाने कब से बह रहे हैं थोड़ा पूछ कर तो आए, इस भरी दुनिया में हर कोई अकेला क्यों है, इस भरी दुनिया में हर कोई अकेला क्यों है, रब से पूछ आए, रब तेरा रब मेरा।

0: सारे झगड़े मिटा आए। रब तेरा रब मेरा सारे झगड़े मिटा आए। नन्हे नन्हे हाथों में कलम किताब दे आए। नन्हे नन्हे हाथों में कलम किताब दे आए। पहला अक्षर तुम लिखो दूजा उन हाथों का। पहला अक्षर तुम लिखो दूजा उन हाथों का। चलो उस माँ को समझा आए। चलो उस माँ को समझा आए। चलो शहर बहुत दूर है गाँव में बस जाए। चलो शहर बहुत दूर है गाँव में बस जाए। हम दो चार सही चलो हौसला तो बड़ा आए। हम दो चार सही चलो हौसला तो बड़ा आए। रात की थरथराती ठंड सुबह मीलों का चलना। रात की थरथराती ठंड सुबह मीलों का चलना। चलो उल्हों में आग सुलगा आए उनके लिए पानी भर लाए। रात की थरथराती ठंड सुबह मीलों का चलना। चलो उनके चूल्हों में आग सुलगा आए उनके लिए पानी भर लाए। नन्हे नन्हे हाथों में कलम किताब दे आए। चलो उस माँ को समझा आए। हो न हो रात अंधेरी है सुबह का आगाज करा आए। हो न हो देश हमारा है उन्हें बता आए। कमती बेसी के तकरार में ना पड़ें अपने मूल्यों का सत्कार करें। कमती बेसी के तकरार में ना पड़ें अपने मूल्यों का सत्कार करें। बेटियों का सम्मान करें। ना डरें ना डर के जिए। ना डरें ना डर के जिए। अपनी आवाज़ को बुलंद करें। माटी अपनी माँ अपनी रात का आंचल अपना। चलो सपनों में खो जाएं। थोड़ा खाया थोड़ा पिया थोड़ा रब के नाम का दिया। बस बहुत है इनायत तेरी। बस बहुत है इनायत तेरी। सजदे में सर झुकाया। बस बहुत है इनायत तेरी। सजदे में सर झुकाया। यूं ही दिन निकल जाएंगे क्या लेकर जाएंगे। हाथ से हाथ मिला ले बंदे बहुत पछताएगा। सब कुछ यहीं पर छूट जाएगा। चलो अंधेरा है दीपक जलाएं।
1: अभी आप साहित्य दर्पण कार्यक्रम के तहत सुमन सिंह से काव्य पाठ सुन रहे थे। और अब आइए कार्यक्रम का रुख करते हैं गीत की ओर और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

परदेश फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में है। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ब्रेक के बाद एक बार फिर गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस है। विश्व मानवतावादी दिवस संकट में फंसे लोगों की मदद करने वाले और अपनी जान जोखिम में डालने वाले मानवीय कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। और विश्व फोटोग्राफी दिवस फोटोग्राफी के इतिहास, कला और विज्ञान को याद करने तथा फोटोग्राफरों के काम की सराहना करने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

ये था सनम तेरी कसम फिल्म का गीत, नीति मोहन, आकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाज़ों में। गीत के बोल थे समीर अनजान के और धुनों में इस गीत को पिरोया था हिमेश रेशमिया ने।

आनंद बख्शी के गीत और दिलीप सेन समीर सेन के संगीत निर्देशन में ये आवाज़ें थी मीका सिंह और सुनंदा शर्मा की, और फिल्म का नाम था लुका छुपी। श्रोताओं, रात कितनी भी घनी हो वो अपने साथ हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है। जीवन की ठोकरें हमें हर दिन कुछ नया सिखा जाती है। ज़िंदगी हमें कदम कदम पर आजमाती है, लेकिन यही आजमाइशें हमें मजबूत बनाती है। इसी सुंदर विचार के साथ चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब समाचारों के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं दिल्ली केंद्र की ओर। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेनदेन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन CGD कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत CGD कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। NTA के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा एजेंसी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड TDPL द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
5: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया TDPL द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर

0: एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जांच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
1: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक

0: होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
1: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
2: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान, दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता। भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए, विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश।

0: हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा। बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू। ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफॉक की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves incentive scheme to accelerate domestic PNG connections. National Testing Agency revamps its examination team by removing 600 experts and onboarding new ones. Jharkhand government releases list of 44 recruitment exams cancelled due to irregularities amid students' protest. Anti-corruption branch of Delhi government arrests former minister and AAP leader Satendra Jain and 5 others in Jal Board bribery case. UAE suspends all trade and financial dealings with Iran after accusing it of missile threat. And India to take on Pakistan in the crucial Pool D match of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, Netherlands today. The government has approved the incentive scheme for promotion of domestic PNG connections aimed at bringing clean, safe and affordable piped cooking gas to households across the country. The scheme will be effective from the 1st of next month. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said that the scheme is designed to fast-track the expansion of active PNG connections, ensuring that more families can start using piped natural gas in the kitchens at the earliest. Currently, there are 1.74 crore domestic PNG connections across the country. The ministry added the new scheme directly incentivizes the city gas distribution companies to actively convert unbilled connections into working gas connections and expand the PNG network to new areas. It said that piped natural gas offers households a safer, cleaner and more convenient alternative to LPG cylinders and traditional cooking fuels. The scheme will be implemented over 2 tranches spanning 6 months. The National Testing Agency NTA has revamped its examination team by removing 600 experts and onboarding new experts. In a social media post, Ministry of Education said that a 4-tier question paper checking system will be put in place by NTA to strengthen the scrutiny of the examination papers. The NTA will also induct 20 to 25 officials in the next 2 to 3 weeks. Further, NTA offices will be shifted to the new premises where security will be reinforced with CISF teams. Jharkhand government last night released a list of 44 recruitment exams that have been cancelled due to irregularities amid students' protests over the issue. Here is a report.
3: The Jharkhand government has cancelled 44 recruitment examinations conducted by JPSC, JSSC and outsourced agencies, including the JSSC CGL and examinations conducted by TDPL. The cancelled examinations include the JPSC 11th to 13th Civil Services examinations, CDPO, Drug Inspector, Civil Judge, Assistant Conservator of Forest, Forest Range Officer, Assistant Professor and other recruitment examinations. The government has also cancelled examination results where the preliminary work was conducted by TDPL, even if another agency subsequently handled the process. The notifications state that the JSSC CGL examination was cancelled based on

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुगम संगीत का कार्यक्रम, और अब लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: अंतराल के बाद सुगम संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवा रहे हैं जगमोहन की गाई कुछ गीत।

मिनिमीट 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। तरानी सुहानी

कार्यक्रम का आगाज दहलीज फिल्म के गाने से। आवाजें महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की। हसन कमाल का गीत और रवि का संगीत।

शावा, बहकी बहकी मस्त अदाएं, चाल शराबी है शावा, चाल शराबी है शावा, तेरी चाल शराबी है शावा।

Shabbat.

शहरयार के गीत और खयाम के संगीत निर्देशन में अब सुनवा रहे हैं उमराव जान फिल्म का गीत। गायिका हैं आशा भोसले।

राम बलराम, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की, गीत आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने पीने उठने बैठने पढ़ने काम करने से बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो, मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो, अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: अंतराल के बाद तराने सुहाने कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है।

गुलजार के गीत और खयाम के संगीत के बाद अब सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी के गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में अनजाना फिल्म का गीत। गायक हैं मोहम्मद रफ़ी।

0: संभल ओए मोच न आ जाए।
1: मोहम्मद रफी के गाए फिल्म अनजाना के इस गीत के साथ ही तराने सुहाने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
3: अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Hey, still stuck on old car? Switch to smarter fuel with more savings with Victoris SCNG. It's smarter because it gives an impressive 27.02 km per kg mileage and has underbody CNG tank, so you don't compromise on boot space. More savings because you get offers up to 50,000 on exchange of your old car. So hurry and book now. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom today. TNC apply.
1: श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए राजेंद्र प्रसन्ना का हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन। इनके साथ तबले पर ग्लैडविन चार्ल्स और खोल पर गौरंग चौधरी ने संगति की है। तो चलिए सुनते हैं राजेंद्र प्रसन्ना का बजाया राग अहीर भैरव।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप राजेंद्र प्रसन्ना का हिंदुस्तानी शैली में बांसुरी वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेशरम से। गायक कलाकार है अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया।

श्रोताओं, अगला गीत निखिल डिसूजा के स्वर में सुनिए। फिल्म बॉस से धुन चिरंतन भट्ट का और बोल मनोज यादव के।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार कृष 3 फिल्म का ये गीत अलीशा चिनाई और जुबीन गर्ग ने गाया है और रचना की है समीर अंजान ने।

0: सूचना।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
2: अरिजीत सिंह की आवाज में ये है मिकी वायरस फिल्म का गीत। गीत के बोल और धुन बनाया है हनीफ शेख ने।

ममता शर्मा के स्वर में सुनवा रहे हैं आपको बुलेट राजा फिल्म का ये गीत। संदीप नाथ के लिखे गीत को धुन दिया है साजिद वाजिद ने।

सिंह साब द ग्रेट फिल्म का गीत सुनिए सोनू निगम की आवाज़ में, बोल कुमार के हैं और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
2: Nexa.
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
0: सूचना।
5: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 तथा राष्ट्रीय स्तर पर ₹5,00,000 तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अगला गीत फिल्म जैकपॉट से, और इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। तो राज और असीम शिराजी के लिखे गीत को धुन दिया है शरीफ और तोशी ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में तैयार आइए सुने यो-यो हनी सिंह का लिखा गीत नेहा कक्कर और यो-यो हनी सिंह की आवाज़ों में फिल्म का नाम है यारियां।

शान और श्रेया घोषाल के आवाज़ों में पेश है जय हो फिल्म का ये गीत। रचनाकार है समीर अंजान और संगीत दिया है साजिद वाजिद ने।

अगला गीत हार्टलेस फिल्म से। गीत को लिखा है अराफत महमूद ने, गाया है अरिजीत सिंह ने और धुन बनाया है गौरव डंकौर डगौनकर ने।

लभ जनुजा, सोनू कक्कर और नेहा कक्कर के स्वरों में आइए सुनते हैं अमित त्रिवेदी का संगीतबद्ध किया और क्वीन फिल्म के इस गीत को लिखा है अन्विता दत्त ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं ए आर रहमान की आवाज़ में, हाईवे फिल्म से। लिखा है इरशाद कामिल ने और धुन बनाया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम गीत गाता चल अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1353वीं कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
3: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
3: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
3: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
3: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
3: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियां तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
3: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों न आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
3: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
3: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओ, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है
2: जी।
3: श्रोताओ, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
3: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा
2: जी।
3: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती, कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
3: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया
2: जी।
3: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
2: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी
2: जी।
3: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
2: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
3: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला

0: कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
0: श्रोताओ, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
1: जी।
0: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
1: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
0: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
1: जी।
0: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
1: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
0: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
0: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का? अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।

0: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
1: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
2: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सब का रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
1: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
3: अरे आ गए आ गए आ गए, देखो
4: देखो देखो आ गए।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, करेंगे किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है,
4: हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
5: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में।

0: जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है! सूरज भाप बादल, वर्षा का जल चक्र यू चलता जाता। सभी बोलेंगे, जल चक्र यू चलता जाता।
1: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
2: बहुत अच्छा।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
4: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
5: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
6: ये तुम्हारा हरा दिया, हरा दिया।
7: वैसे तनु, हाँ, बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
8: जी,
7: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
8: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
7: ये कैसी अजीब बात है?
8: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
7: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
8: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
7: अच्छा बेटा तनु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
8: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
7: अच्छा?
8: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना। हाँ, जल्दी सुनाइए।
7: हाँ, बेटा
8: जल्दी सुनाइए।
7: अरे सोचने तो दो,
8: जल्दी
7: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
8: अरे जीवन काका।
7: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
9: बाबूजी,
7: हाँ?
9: आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
7: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
9: जी,
7: यहाँ लेट जाओ।
9: जी,
7: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु,
8: जी
7: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
8: जी अभी लाई।
7: हाँ हाँ, खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
9: जी,
7: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है।
9: जी,
7: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
9: जी जी जी जी।
7: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
8: जी, जी, जी, नाना जी।
7: हाँ ला बेटा ला। जीवन
9: जी
7: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
2: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
2: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
2: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
2: जी,
1: जिसे बुखार होता
2: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
2: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
2: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
2: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
2: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
2: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
2: जी।
1: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
2: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
2: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।

0: अच्छा,
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते।
0: हाँ,
1: लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी,
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना।
0: जी,
1: समझ गई ना?
0: जी,
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था।
0: जी,
1: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
0: अच्छा,
1: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
0: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
1: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
0: अच्छा।
1: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
0: जी,
1: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
0: अच्छा।
1: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
0: जी,
1: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
0: अरे वाह।
1: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
0: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
1: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
0: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
0: जी,
1: बोलकर बतला देता है।
0: नाना जी।
1: हाँ?
0: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
1: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
0: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
1: है ना
0: जी।
1: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1353वीं कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कसूर से। गीत को लिखा है समीर ने, गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के आवाज़ों में आइए सुने तहलका फिल्म का गीत रचना हसरत जयपुरी की और संगीत अनु मलिक का।

समीर का लिखा गीत और नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया, ये है धड़कन फिल्म का गीत, गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

0: smooth. Lead every play with the new Brezza. Now available with the exciting turbo booster jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza. Now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में तैयार कहो ना प्यार है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने और रचना की है सावन कुमार ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वरों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। जोश फिल्म से इस गीत को बनाया, इस गीत के धुन को बनाया है बप्पी लहरी ने और रचना अमित खन्ना की।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर

0: मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गई। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। संयुक्त अरब अमीरात ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामेली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता तथा वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। बैडमिंटन में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की भारतीय जोड़ी BWF विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधा प्रतिशत गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 315 अंक गिरकर 76,921 पर और निफ्टी 97 अंक गिरकर 24,058 पर था। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ में दिन में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw has said that India's economic growth is now recognized globally and the country is growing at a growth range of 6-8%. He said this growth story is driven by four key pillars: investment in social, digital and physical infrastructure, inclusive growth and a strong focus on manufacturing. Addressing the Uttar Pradesh-Japan Investment Summit 2026 in New Delhi today, Mr. Vaishnaw said, investment is an important part of the country's growth journey, with India investing around $130 billion every year.
2: We have been growing at a very sustained pace of 6-8% growth band, with moderate under control inflation, with very good balance sheet, and making sure that the entire country grows together. This is possible because of the four pillars of our growth story: investment in social, digital and physical infrastructure.
1: The Enforcement Directorate or ED has conducted searches at 10 premises in Rampur and Saharanpur in Uttar Pradesh and Delhi in connection with a money laundering investigation involving the Maulana Muhammad Ali Johar Trust and Muhammad Ali Johar University in Rampur. The ED said the searches were carried out under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It added the investigation relates to the alleged diversion of government contract funds through private contractors and their subsequent use, including for creation of assets for the university or the trust. The ED said that the searches were aimed at tracing the alleged proceeds of crime and recovering financial

शाह अपने आप को कहते हैं भुलिया, रात को जागता है, दिने पीर बनकर बैठ जाता है। अरे कुत्ते भी तो तेरे साथ सारी रात जागते हैं, तू पीर बनकर बैठ जाता, कुत्ते कुछ भी नहीं बनते। कुत्ता

श्रोताओं, महफिले कवाली कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप वारसी बंधु की आवाज़ में कुछ कवालियाँ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें आई है पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल शिवांश, संगीता, लिपि और दीपाली गोप का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं बनारसी बाबू फिल्म का ये गीत।

अगला गीत जंजीर फिल्म से। इस गाने की फरमाइश हमें आई है गांव शोभापुर मेरठ से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का।

सेक्टर 5 कोड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित और बेबी कर्फी सुनना चाहते हैं जंगली फिल्म का ये गीत।

महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेश पुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का।

रामपुर रंगत से नीलम कुजूर, जॉश मिंच, नेहा ज्योतिकार, रोहित निकिता मिंच, हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं शापित फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का की अंतिम फरमाइश हमें आई है दत्रेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं जीना तेरी गली में फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी, हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी
0: सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
1: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
2: उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो

0: ते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
2: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पर्टी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत

0: पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 8 लाख महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 5 लाख से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन, चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपये की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न है। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से फंसे 230 छात्रों को बचाया है। IMD ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। BRO के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
3: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से N. गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
0: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए

372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह है आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है। मछुआरों को आज यानी 19 से 22 अगस्त के दौरान समुद्र में ना जाने और समुद्र के किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:32 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती FM 3 विजयपुरम
1: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइव फोन आउट कार्यक्रम है, इसलिए आप हमें कॉल ना करें, हम स्टूडियो से ही आपको कॉल करेंगे। और आज जिन श्रोताओं से हम जुड़ेंगे उनकी सूची पहले से ही तैयार है, तो आइए देर ना करते हुए बात करें आज के हमारे पहले दोस्त से। हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड,

हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. लगता है इस श्रोता से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड।
1: हेलो,
0: जी, क्या मेरी बात
1: आवाज नहीं आ
0: अभी।
1: रहा है जी।
0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: आपकी आवाज नहीं आप पहुंच रहे मेरे पास। लगता है फोन लाइन के कुछ दिक्कत है। हाँ
0: हेलो डियर फ्रेंड, मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो डियर फ्रेंड,
1: तो अगर मेरी आवाज पहुंचे तो मुझे समझ लीजिएगा। मूवी के नाम है आरजू, गाने के बोल हैं, मैं आ रहा हूँ वापस, मेरा इंतजार करना।
0: जी, चलिए सुनते हैं आपकी
1: और
0: पसंद।
1: मेरे साथ सुनेंगे तनुश्री हैं महाराष्ट्र से, राकेश जी हैं, पूरन वर्मा हैं, और अभिजीत दवान सुनने वाले हैं, अनुप कुमार जी सबके साथ।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: आया उधर आवाज मेरी पहुंची।

0: हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।
0: नहीं, अभी अभी गाना ही बज रहा है ना। हाँ,
1: हेलो डियर फ्रेंड।

0: हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड,
0: हेलो।
1: हेलो डियर फ्रेंड।
0: हाँ जी नमस्कार जी।
1: जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो
0: हेलो
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो हेलो डियर फ्रेंड, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड, शायद इस कॉलर से भी हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।
1: हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में बात कर रहा हूँ।
0: जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी
1: मुझे
0: आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे।
1: कोई भी गाना चला रही है।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: हाँ हाँ हाँ

0: श्रोताओं, कुछ और दोस्तों से हम जुड़ेंगे इस अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
2: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
1: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: श्रोताओं, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लाइव फोन आउट कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में, और हम फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। तो चलिए बात करते हैं हमारे और भी दोस्तों के साथ। हेलो डियर फ्रेंड
1: जी, नमस्कार जी।
0: जी जी नमस्कार नमस्कार।
1: और आवाज की दुनिया के तमाम सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा आदाब और सलाम
0: जी।
1: और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर किलू पर बोल रहा हूँ।
0: जी जी परवेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी शुक्रिया
0: जी। जी कैसे हैं आप?
1: बस अच्छे हैं
0: जी। बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरा व्यवसाय जो है फर्नीचर का काम है मेरा लखनऊ के अंदर।
0: जी जी
1: और वही होता है मेरा।
0: तो रेडियो सुनते हैं?
1: जी, रेडियो को मैं सुनते हुए लगभग 34 या 35 साल हो गए।
0: जी जी
1: और मेरा एक मेरा रेडियो श्रोता संघ है, अमन रेडियो श्रोता संघ लखनऊ उत्तर प्रदेश से
0: जी।
1: और इसमें हम करीब 20 लोग श्रोता काम करते हैं
0: जी। जी
1: रेडियो के हालात भी देखते हैं, आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनको सुधार करना, रेडियो स्टेशन पे जाना, उनसे बात करना,
0: जी
1: ये तमाम हमारे काम है
0: जी। बहुत खूब। तो रेडियो में कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है हमारा?
1: रेडियो के तमाम सभी प्रोग्राम अच्छे लगते हैं लगभग
0: जी जी जी
1: किसी एक।

0: प्रोग्राम को क्या ना दूसरे दूसरे प्रोग्राम की तौहीन करना है।
1: जी जी तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: जी मैडम, मुझे फिल्म अनुराग फिल्म का गीत सुनना है, और गीत को बोले सुनरी पवन पवन पुरवैया।
1: जी जी जी तो और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: मेरे दोस्त रहते हैं मेरे पास, अभी गए हुए हैं अभी, शमसुल कमर राही जी हैं, मोहम्मद कलीम अंसारी हैं, यासीन हाशमी जी हैं, मोहम्मद फारूक शेख हैं, पप्पू भाई बिजली वाले इरफान कुरैशी, बहुत से लोग हैं, और अभी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से मेरे पास से गए हुए हैं।
1: जी जी परवेश जी, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी शुक्रिया।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो डियर फ्रेंड,
1: हेलो डियर फ्रेंड्स, आदरणीय हमारी प्यारी बहन को नमस्कार
0: जी नमस्कार नमस्कार
1: जी। मैं उदयलाल टेलर उदयपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जी। उदय जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: धन्यवाद।
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मस्त है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम का आनंद ले रहे हैं और विजयपुरम सुन रहे हैं तो आनंद आ रहा है। आज थोड़ी सी गड़बड़ है तो आवाज श्रोताओं की

0: आवाज नहीं आ रही है।
1: जी जी कुछ तकनीकी कारणों के कारण
0: जी
1: आवाज नहीं आ रही थी
0: जी
1: जी। तो बताइए क्या करते हैं आप?
0: जी हमारा तो टेलरिंग का काम है,
1: जी
0: 40 साल से हम यही काम कर रहे हैं।
1: जी जी गाने सुनना
0: और
1: पसंद करते हैं?
0: रेडियो तो हम 50 साल से ज्यादा हो गए हैं सुन रहे हैं।
1: जी जी गाने सुनते हैं?
0: गाने सुनते हैं, हेलो डॉक्टर की बातें सुनते हैं, सभी तरह के प्रोग्राम सुनते हैं, किसान वाणी भी सुनते हैं, और हमारे प्यारी प्यारी बुलबुलों की आवाज सुनते हैं तो और भी आनंद आता है।
1: जी किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं आप? पुराने
0: हाँ लगभग पुराने गाने हमें पसंद आते हैं
1: गाने?
0: क्योंकि पुराने गाने सुनकर हम बड़े हुए हैं।
1: जी। तो
0: जी
1: हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: आज सुनेंगे फिल्म अभिनेत्री का गीत, लता जी की आवाज है
1: जी।
0: और हेमा मालिनी पर फिल्माया गया है।
1: जी और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: हमारे सर्वप्रथम तो आप सुनेंगी हमारी बहन, और उसके बाद में हमारे ग्रुप के श्रोता भाई बहन है वो सुनेंगे, गौतम राय बोले जी, गंगाधर सावनकर जी, लोकेंद्र जी, भगवान सिंह जी, टेकचंद जी, तुकाराम जी, जगदीश राय जी, धीरज भाई, दिलीप जी और एकता रेडियो श्रोता संघ के सभी भाई बहन सुनेंगे।
1: जी। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी बहन बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी जी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू।
1: जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी नमस्ते। प्रेम
0: जी, नमस्ते।
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: जी प्रेम जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू। कैसे हैं आप?
0: जी मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, बहुत खूब।
1: जी
0: तो
1: तो मैं एक बात बताऊं
0: जी
1: जी, जैसे कि विजयपुरम से फोन आउट प्रोग्राम होता है ना, तो
0: जी
1: इससे मतलब श्रोताओं को काफ़ी खुशी होती है। इसमें कॉल लगाने का मतलब नहीं रहता है श्रोताओं को। ये ऐसा प्रोग्राम एक है जो आकाशवाणी से श्रोताओं को कॉल आता है।
0: जी जी
1: जी तो ऐसे मतलब हर किसी आकाशवाणी पे नहीं होता है, कुछ चुनिंदा आकाशवाणी होते हैं ना,
0: जी जी
1: उन्हीं पे ये कार्यक्रम होते हैं।
0: जी जी जी जी
1: जी इससे मतलब श्रोताओं को काफी उत्साह रहता है, और मतलब श्रोता ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं।
0: जी जी
1: जी और आपको बताऊँ, कल 20 अगस्त है और श्रोता दिवस भी मनाया जा रहा है, तो सभी श्रोता, भारतवर्ष के आकाशवाणी के सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाइयाँ।
0: जी जी
1: जी
0: तो वहाँ के मौसम के बारे में हमें बताइए, क्या क्या हाल है?
1: जी मौसम काफी अच्छा है। अभी 3-4 दिन से पहले अच्छी बारिश हुई थी,
0: जी
1: अभी तो मतलब हवाएं चल रही है और साफ मौसम है।
0: जी जी तो रेडियो सुनते हैं?
1: हाँ मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: तो कौन सा कार्यक्रम हमारा अच्छा लगता है आपको?
1: एक तो ये फोन आउट वाला हो गया, इसके अलावा एक म्यूजिक लवर्स आता है शाम को, और एक आता है रविवार के दिन सुबह 10 बजे हेलो फरमाइश, वो भी सुनता हूँ और पार्टिसिपेट भी करता हूँ।
0: जी, तो
1: हाँ जी
0: जैसा कि आपने बताया कि आप उज्जैन से हैं,
1: जी
0: तो वहाँ के कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में हमें बताइए, जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। उज्जैन महाकालेश्वर बाबा का मंदिर बना हुआ है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और क्षिप्रा नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है,

0: इसकी सबसे विशेषता यह है कि यहाँ पे महाकालेश्वर बाबा दक्षिण मुखी रूप में बैठे हुए हैं, जो एक बार दर्शन करने पर ही मतलब सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, ऐसी मान्यता है।
1: जी जी जी
0: हाँ जी। और यहाँ पर हर 12 साल में सिंहस्थ का मेला भी लगाया जाता है, जो अभी 2028 में यहाँ पे लगेगा।
1: जी, हमारे श्रोता भी जाएंगे वहाँ पर।
0: जी बिल्कुल, सभी श्रोताओं का स्वागत है। और अभी सावन महीना चल रहा है ना,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: बहुत दूर दूर से मतलब कांवड़ यात्री बाबा को जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यूँ समझे कि उज्जैन के 10-10 किलोमीटर तक दूर तक मतलब भगवान रंग लहरा रहा है और महाकाल के जयकारे गूंज रहे हैं।
1: जी,
0: हाँ
1: तो प्रेम जी, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: फिल्म का नाम है तू चोर में सिपाही, और गाने के बोले हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर।
1: जी, और किसके साथ सुनना चाहेंगे?
0: जी लोकेंद्र वर्मा है, आशुतोष अविना संगीता जी है, भगवान सिंह परमार है, केसरी सिंह राजपूत जी है, सुनील झा है, रमेश टेलर है, और हाँ टेकचंद अग्रवाल, उदयलाल टेलर।
1: जी प्रेम जी, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी थैंक यू
1: जी।

Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. Hello, dear friend. शायद इस कॉलर से हमारा संपर्क टूट चुका है, तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारा लाइफ ऑन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स सुन रहे थे।
1: हेलो डियर फ्रेंड, हेलो डियर फ्रेंड।

आप सुन रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यूं ही गाते रहो।

दोस्तों, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ वक्त कभी रुकता नहीं, बस आगे बढ़ता जाता है। कुछ पल बीत जाते हैं और कुछ याद बन जाते हैं। हर पल को खुलकर जीना सीखिए, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता।

दोस्तों, जिंदगी में भी मौसम की तरह बदलाव आते रहते हैं। कभी धूप तो कभी बारिश, कभी रास्ते आसान होते हैं तो कभी थोड़े मुश्किल। कभी कोई पल हमें हंसा देता है तो कभी कुछ नया सिखा जाता है। हर दिन अपने साथ एक नया अनुभव लेकर आता है और बस इन्हीं अनुभवों के साथ जिंदगी आगे बढ़ती रहती है।

दोस्तों, कुछ सफ़र हमें नई जगहों तक तो ले जाते हैं और कुछ खुद से मिलाते हैं। सफ़र में मिलने वाले लोग और छोटी छोटी बातें सफ़र को और यादगार बना देती है। कभी कभी बिना किसी खास मंजिल के निकला सफ़र भी बहुत खूबसूरत होता है।

0: सूचना।
1: इंडियाज ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स आर नॉट जस्ट इट्स मॉन्यूमेंट्स, दे आर इट्स पीपल, कल्चर एंड अनटोल्ड स्टोरीज। द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थ्रू प्रसार भारती प्राउडली प्रेजेंट्स जेम्स ऑफ इंडिया, अ नेशनल इनिशिएटिव इनवाइटिंग क्रिएटर्स टू शोकेस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट्स, वेदर इट्स कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, फेस्टिवल्स, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल हीरोज और हिडन डेस्टिनेशंस। Your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
0: दोस्तों, आशाएं हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब रास्ते मुश्किल लगते हैं, तब यही उम्मीद हमारा साथ देती है। और शायद इसी उम्मीद की वजह से हम कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा में पहले लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: सिनलाम इन ये रोखरे हमांग इन रे तक लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर हेक 684 किलोहर्ट्ज़ रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अनगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही इंहरा नमंडमान निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन नहालेल न शेड्यूल न इंग सॉर्ट अंडमान डिस्ट्रिक्ट तंगम टेबल टेनिस चैंपियनशिप न के करें इप तनेर नाय लुई अलाउंचिंग एट ये प्लेयर्स तमी होय न रजिस्टर हेड मिने एंड्र हेक मिने नुप टीम रे एंड्रे नाच कोरेन आचा न लक न एल गम गूगल फॉर्म ती न दाज इप त नेर नाय का होक अलांगो ऑगस्ट चिंग एट ये नहरु तमी कहलोन रे आचा नाच कोरेन न के गी कॉन्टेक्ट नंबर तके तुव 9474225669 आज इन गम तहे गे एक नंबर 7695046951 रमांग इन गम अंडमान एंड निकोबार स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन अनगी मिनका तलोन ही हॉय ये तो हेक सीन हंगरन ने चोग महावत कर नलक एल हॉय नकुन पनाम ही चामु मायबंदर द डिक्लीपुर एमवी सेंटिनल चू मायबंदर द डिक्लीपुर इप्त नेरनायनेट अलांगोचिंगेट इत सट कंजो तलाब तहत नलक न्य हेड वाफ नच हवन इप्त नेरनाय लुई अलांगो चिंगेट इत नेट कंजो तला सकाम न रांग डिक्लीपुर सक मायबंदर अनमिनगम चोग एल तल कर न चुसरी विजयपुरम एमवी जॉली बॉय चू मायबंदर द डिक्लीपुर इप्त नेरनाय काहोक अलांगो चिंगेट इत सट कंजो तलापुह नलक न्य Phoenix page ti ngach hawan ipte nernai net alang chinget ite sat kain ro talapuh narang tiklipur sekma mandar minam chung el tala kare ne jusri vijayapuram mb kalikhat chuli dirana man da khane ke bare ipte nernai net alang chinget ite sat kain ro talapuh ne leknya head off ngach hawan ipte nernai lui alang chinget ite fan kain ro taharap narang khane ke bar sekli dil andamanan minam chung el tala kare ne jusri vijayapuram MV Kalikar Chu in mine lalong amin kun panam ibtene rena sat alango chingit ita sat kainro talapuh ne leknya hadwa sek lili landaman karni kebar chora teresa kachal nan kori el tala karena chu campbell bay ngachawan ibtelu yana alango chingit itene sien kainro ta sakama na rang campbell bay sek nan kori kachal teresa jora karni kebar el tala karena chu sri vijayapuram MV Campbell Bay Chunan Kaur the Campbell Bay Ibtanera Nai Tanai Alango Chingit Ita Majutra Kainro Tapuhu Nalaknya Hadawaf Nga Chawan Ibtanera Nai Sat Alango Chingit Ita Hewar Kainro Talapuhu Narang Campbell Bay Sek Nan Kauri An Minam Chung El Tala Karana Chusri Vijayapuram Anununne Min Kahtalon Hi Ingi Harap Tehangi terasin tengi terahai ian roh ya ialahane sakama World Humanitarian Day tengam World Photography Day inri. Kekaren nunne tener sakama heel temaju terasin alango August jinget desa ngam Humanitarian Day heik tengam World Photography Day. Ngam World Humanitarian Day.

0: nga chin ta hei hang mene tin ke ke ti email hi a small la pati hoi hang atel nga na sin ta mu hek in ore chang ra ngi ta ka sa te the fan kai ra ta la harap nga yen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी।

नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, नमे प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूँ आरजे चेतन। आज हम एक ऐसे विषय उठा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से हमने से कई लोगों की रुचि है, कार्य और जीवन में संतुलन। स्वस्थ जीवन शैली के लिए रणनीतियाँ, चाहे आप यात्रा पर हो, व्यायाम कर रहे हो या बस एक शांत पल का आनंद ले रहे हो, आइए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने के ठोस तरीके पर गौर करें। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके इस भवंडर में काम और जीवन के बीच उस मधुर स्थान को छूना एक तेज रफ्तार ट्रेन पकड़ने की कोशिश करने जैसी महसूस हो सकता है, लेकिन आप जानते हैं कि क्या ये सिर्फ एक पहेली से कहीं अधिक है। ये हमारी भलाई को बरकरार रखने और हमारी खुशी के स्तर को ऊपर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। जब तक ये प्रोग्राम खत्म न हो आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि हम कुछ व्यावहारिक रणनीतियों को उजागर करने जा रहे हैं। ये केवल आपकी सामान्य युक्तियां नहीं है, ये कार्य प्रतिबद्धताएं और व्यक्तिगत पूर्ति को संतुलित करने का नाजुक नृत्य के माध्यम से शानदार ढंग से चलने के लिए आपके भरोसेमंद रोड मैप की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस संतुलन क्रिया को थोड़ा और अच्छा संतुलन बनाते हैं। तो अब दोस्तों इस तथ्य पर हाँ कहकर शुरुआत करें कि उस आदर्श संतुलन तक पहुंचना एक बार की मंजिल के बजाय निरंतर चलने वाला साहसिक कार्य की तरह है। इसे एक यात्रा के रूप में देखें, न कि एक पड़ाव के रूप में। चाल एक ऐसी लाए कि खोज करना है जो आपके लिए क्लिक करती है, कुछ ऐसा जो आपको अपने व्यक्तिगत जीवन और जुनून को बढ़ावा देने के साथ साथ उन पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने देता है। ये सब उस जगह को खोजने के बारे में है जहां आपका काम और व्यक्तिगत दुनिया सामंजस्य स्थापित करती है, एक ऐसा माहौल बनाती है जो विशिष्ट रूप से आपका है। हाँ प्रिय श्रोता, काम में आपके समय का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे व्यक्तिगत गतिविधियां आपके शेड्यूल में लुका छुपी खेल रही है। तो आइए इस बारे में बात करें कि आत्म देखभाल कैसे करें, क्योंकि आप व्यस्त कार्यक्रम के बीच है, तरोताजा और विश्राम के उन क्षणों के हकदार है। तो आइए दोस्तों एक गेम चेंजर पर जूम इन करें, वह है सीमाएं निर्धारित करना। नॉनस्टॉप डिजिटल कनेक्शन के इस युग में काम उस दोस्त की तरह हो सकता है जो अपने स्वागत से ज्यादा देर तक रुकता है। काम के घंटे और व्यक्तिगत समय के बीच एक रेखा खींचना अपना खुद का जादुई मंत्र रखना जैसा है। ये अराजकता में संरचना लाता है और उस भयावह राक्षस के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य करता है। दोस्तों हम सीमाएं तय करने की बात कर रहे हैं। आप जूम कॉल, ईमेल और कार्य से निपटने के एक दिन पूरा करते हैं। आप सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करने के बजाय आप विराम कर सकते हैं। ये सीमाएं निर्धारित करने का जादू है, ये घोषणा करने के बारे में है, ठीक है काम करो, आपकी बारी है, अब ये व्यक्तिगत समय है। ये न केवल आपके निजी जीवन को काम के बोझ तले दबने से बचाता है बल्कि आपके मस्तिष्क को भी वह आवश्यक विश्राम देता है जिसका वो हकदार है। काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ

बैलेंस कहलाता है मेरे दोस्तों। इस तालमेल के बिगड़ने से काफी कुछ बिगड़ सकता है, इसीलिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फिट एंड फाइन रहने के लिए लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस का होना बेहद जरूरी है। कामयाबी के लिए घंटों घंटों तक मेहनत करना ठीक माना जाता है, लेकिन खुशहाल और हेल्थी लाइफ के लिए काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाइए। इसे वर्क लाइफ बैलेंस कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो काम और फैमिली के बीच तालमेल रखना ही वर्क लाइफ बैलेंस है। आप प्रायोरिटीज फिक्स करें मेरे दोस्तों, प्राथमिकता तय करें। एक समय में एक ही काम करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले प्रायोरिटीज तय करना पड़ेगा। जो काम पहले जरूरी है उसे पहले करना चाहिए और गैर जरूरी कामों को बाद में करें। इससे पर्सनल लाइफ के लिए समय मिल जाता है। काम में जो छुट्टियां मिले उसे सही तरह मैनेज करें, जिससे घर के किसी जरूरी इवेंट मिस न हो। बात समझनी चाहिए कि जिंदगी में जो समय आ रहे हैं वो बीत जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। फैमिली के साथ दोबारा टाइम भी नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑफिस के काम के साथ साथ अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को भी मैनेज करें। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, इसीलिए टाइम को मैनेज करना सीखे। अगर एक काम निश्चित समय पर नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी दूसरे की मदद ले। इसके लिए कभी भी हिचकिचाए नहीं, इससे काम आसानी से हो जाएगा और थकान भी आप पर हावी नहीं होगा। ऑफिस और फैमिली के लिए वक्त निकालते निकालते खुद को समय देना न भूले। अपनी हेल्थ के लिए खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इस वक्त में जो काम आपको खुशी दे वही करें, इससे आप खुद को और दूसरों को खुश रख पाएंगे। हर चीज को पहले से प्लान करके चले, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या की सही प्लानिंग करें। इसके लिए आपको सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की सबसे पहली शर्त यह है कि आपको वक्त बर्बाद करने के बजाय इसको आपको फोकस करने के लिए यूज करना चाहिए। अपने बच्चों की रूटीन और फिर ऑफिस पहुंचकर वहां के कामों को पूरा करने का प्लान पहले ही करना चाहिए। हर काम का प्राथमिकता तय करें, जैसे कि मैंने आपने पहले बोला कि प्रायोरिटाइज योर वर्क। अपना होमवर्क समय पर करें, अपने लिए कुछ समय निकालें, जीवन साथी से खुलकर बात करें। वर्किंग वुमेन होने के नाते आपकी जिंदगी बिल्कुल सहज और सामान्यता तरीके से चले, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उसे हिचक तोड़कर सारी बातें करें और दोनों मिलकर घर परिवार की सारी जिम्मेदारियों को आपस में बांट लें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से मिल बांट कर हो जाएगा। घर का काम ऑफिस, ऑफिस का काम घर पर न लाए। ये भी सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र है कि घर के काम को कभी भी ऑफिस में न लाए। प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करें और ऑफिस के काम को भी कभी घर पर न लेकर जाए। ऑफिस का सारा काम वही खत्म करके आए। जो महिला घर को और ऑफिस दोनों मैनेज करती है, उनके दिमाग में कई सारे बातें चलती रहती है, इससे इन्हें तनाव भी अधिक होता है। इससे कई बार डिप्रेशन के शिकार भी होते हैं। इसके लिए इन बातों का रखे ध्यान जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं दोस्तों। जिंदगी में हर बात को बहुत अधिक गंभीरता से न लिया करें। किसी भी चीज के बारे में दिन भर सोचते न रहना। सकारात्मक चीजें करें और नेगेटिव बातों को दिमाग में लेने की कोशिश न करें। दिन में कम से कम समय ही सही मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। काम को बाद में करने में भरोसा न छोड़ो। इससे आप अपने दिमाग को शांत रखकर अपने मेंटल हेल्थ को खुद मैनेज कर सकते हैं। कहने को ये बात आम लगती है, लेकिन ये सच है। घर परिवार और ऑफिस के चक्कर में कई बार हम खुद को पूरी तरह से भूल जाते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका शेड्यूल कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपनी सेहत के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकाले। सुबह व्यायाम करने से दिन भर आपका दिमाग और शरीर अच्छा रहेगा। ये भी बेहद जरूरी है कि बड़ी खुशियों का इंतजार न करें। वक्त मिलते ही कम दिनों के लिए सही वेकेशन पर जरूर जाइए, कई परिवार के साथ घूमे और कभी बाहर खाने पर चले जाए या कभी फिल्म देखने जाए। कुछ नहीं तो नहीं, अपने घर के आसपास वाले पार्क में जाके वॉक कर लीजिए, अपने दोस्तों से मिलिए। कुछ अच्छा सा काम जो आपको अच्छा लगे करने में, जैसे कि आपके हॉबीज रहे होंगे, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक, डांस, जो भी आपको पसंद है ये सब आप कर सकते हैं और अपने आप को खुश रखिए। विद दिस लवली

0: information. This is your RJ Chetan signing off for today. I'll get back to you in our next program. Till then, have a great time. Bye.
1: आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम। तमिल में बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा सिरुवर पोंगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर बंगला में आनंद लीजिए आधुनिक गीतों का। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6 बजे डॉक्टर नागेश राम से की गई बातचीत का विषय रहेगा मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव। संध्या 6:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दर्द भरे नगमे। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर सुनिए गीतों भरी कहानी मानवता ही हमारी पहचान। रात 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार रात 8:30 पर। रात 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए सरगम। रात 10 बजे ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे News@9, 9:15 पर स्पॉटलाइट और 9:30 पर चर्चा का विषय है कार्यक्रम होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम और अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्री टिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा धान की खेती। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा शक्ति शीर्षक पर, जिसे आप सुनेंगे कल सवेरे 6:15 पर। 6:30 पर सुनिए रामचरित मानस गान। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागिनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में पर्यावरण कार्यक्रम के तहत राजा राम की वार्ता सुनिए पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप इकबाल बानो, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को सुन पाएंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने सवेरे 9 बजे। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सी सरोजा और सी ललिता का गायन आप सुन पाएंगे। सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा SMS माई चॉइस। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दिन की 11 बजे। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:10 पर आप शारदा को सुन पाएंगे। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि

500.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक के साथ। फिल्म गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो दोपहर बाद 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। फिल्म गीतों का कार्यक्रम होगा बाहरों की शाम 4:45 पर। शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम में किसानों के लिए कार्यक्रम होगा वेलन उल्लगम। बंगला में 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए चिरंतनी। संध्या 6 बजे किसानवाणी कार्यक्रम में डॉलीगंज निवासी जी कमला के साथ की गई बातचीत का विषय रहेगा देसी मुर्गी पालन कम लागत ज़्यादा मुनाफा। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं धर्म करम फिल्म का एक गीत मुकेश की आवाज़ में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।

0: फिल्म गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली निलयम वळंगुम तमिळ अमुदम वणक्कम नेयर्गले।

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान बहनों और भाइयों को वर्षा का नमस्कार और आज के इस अंक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपके जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था, क्योंकि समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण अवश्य दिखाता है। इसलिए साथियों, किसी के व्यवहार से टूटना मत, शांत रहना और अपने रास्ते पर चलते रहना, क्योंकि उत्तर शब्द नहीं समय देता है। इन्हीं नेक विचारों के साथ चलिए अब हम बढ़ते हैं खेती किसानी की ओर। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हर रोज की तरह हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। और हमारा आज का प्रश्न है, बोड़ो मिश्रण में क्या होता है, ये आपको बताना है। प्रश्न एक बार फिर सुने, बोड़ो मिश्रण में क्या होता है। साथियों, आप इस प्रश्न का उत्तर सोचते रहिए। कार्यक्रम के अंत में हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रूपए, राज्य स्तर पर 2,00,000 रूपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रूपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव, इस संदर्भ में आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर नागेश राम जी से। तो चलिए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नागेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां तक मछली पालन का सवाल है, तो किसान भाई हमारे द्वीपों में करते हैं, मीठे पानी की मछली पालते हैं
3: जी।
2: तो इसमें जो मछली बीज उत्पादन का जहां तक सवाल है, तो इसका क्या महत्व है, कितना अहमियत है ये?
3: देखिए, मत्स्य पालन जो है आज के दिनों में हमारे देश में एक मत्स्य उद्योग का रूप ले चुका है
2: जी।
3: और ये पूरा मत्स्य पालन जो है, इसका बैकबोन जो है मछली बीज ही है।
2: अच्छा।
3: अगर फार्मर्स के पास में मछली बीज ना हो तो वो मछली पालन नहीं कर सकते। तो इस मछली बीज को उत्पादन करने के लिए हम 3 भारतीय मेजर कार्प जो कहते हैं उनका बीज उत्पादन करते हैं। ये बीज आपको प्राकृतिक स्रोतों से भी मिलते हैं, नहर वगैरह से। अगर हम प्राकृतिक स्रोतों की तरफ जाएं तो ये बीज से हम मत्स्य पालन उद्योग को बढ़ावा नहीं दे सकते।
2: अच्छा, क्योंकि वो बहुत कम मिलेगा।
3: और मिलेगा भी तो मिक्स टाइप का मिलेगा, सभी अच्छा। प्रजाति की मछली मिलेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उत्प्रेरित प्रजनन
2: अच्छा।
3: करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम जो जिस मछली का ज़्यादा डिमांड है, जो ज़्यादा बढ़ती है, उस मछली को सेलेक्ट करते हैं, उसमें कुछ हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं, उसमें से हम बीज उत्पन्न करते हैं।
2: अच्छा।
3: और ये बीज जो है एकदम शुद्ध और स्वस्थ बीज हो।

अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए कृषि जगत कार्यक्रम।

0: जिस मछली का बीज का जरूरत है वही मछली के बीज हम बना सकते हैं और किसान भाई को पालन
1: दे
0: करने के लिए
1: सकते
0: दे
1: हैं
0: सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आमतौर पर ये देखा गया है कि बीज के जो मांग है इतनी ज़्यादा है कि हम जो एक सीजन में बीज उत्पादन करते थे उसमें इसका पूर्ति होना मुश्किल हो गया हमारे देश में। तो
1: अच्छा
0: इसके लिए अभी बहुप्रजनन प्रणाली का विस्तार किया गया है। इसमें हम एक ही मौसम में एक ही मछली से 2 या 3 बार बीज उत्पादन कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसमें से बीज उत्पादन के लिए लागत भी कम आएगी और अच्छे से अच्छा बीज उत्पन्न करके
1: अधिक
0: हम
1: संख्या में बीज भी मिलेगा,
0: दे सकते हैं फार्मर्स
1: अच्छी
0: को।
1: बात है। अब जहाँ तक मछली बीज उत्पादन का सवाल है, तो इसमें मछलियों का चयन एक बहुत अहम भूमिका निभाता
0: जी
1: है, तो
0: हाँ,
1: इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: देखिए मैंने बताया कि आमतौर पर जो है भारतीय कार्प मछलियाँ जो 2 वर्ष की आयु में मैच्योर हो जाती है,
1: अच्छा
0: इन मछलियों को ही हम 2 साल या उसके ज़्यादा के उम्र के मछलियों को प्रजनन के लिए
1: सुनते हैं,
0: चुनते हैं। और इन मछलियों को जो वज़न है 1 से 3 किलोग्राम के बीच में होने से इसको पकड़ने के लिए इंजेक्शन देने के लिए बहुत सुविधा होती है और इसमें जो है जो अंडे जो देती है मछली उसका भी कम नुकसान होता है और अच्छे से अच्छा अंडा भी मिल जाता है और मछली भी स्वस्थ रहती है
1: अच्छा
0: उसमें।
1: यानी कम से कम 2 साल आयु की होनी चाहिए और स्वस्थ मछली होनी
0: जी
1: चाहिए,
0: हाँ
1: तो ऐसी मछलियों को चुनना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: और प्रजनन के लिए मौसम कैसा होना चाहिए?
0: देखिए मैंने तो बताया कि हमारे द्वीप समूह में हम मई से लेकर के जुलाई तक का जो है बीज उत्पादन करते हैं मछलियों से।
1: अच्छा
0: बहु प्रजनन प्रणाली में हम 3 बार भी एक मछली से करते हैं, लेकिन ये जो समय है मौसम है वर्षा के दिनों में बहुत अच्छा होता है। इसमें टेम्परेचर वगैरह जो ब्रीडिंग के लिए ज़रूरत है वो सही तरीक़े से मिल जाता है और मई से लेकर के हम ये जुलाई या अगस्त तक इसका ब्रीडिंग कर सकते हैं।
1: अच्छा इसके अलावा जो प्रजनन के लिए जिन मछलियों को हम चुनते हैं, जैसे आपने बताया कि किस तरह से मछलियों का चुनाव करना
0: जी
1: चाहिए,
0: हाँ
1: तो इन मछलियों का रखरखाव भी बहुत ज़रूरी होगा।
0: बिल्कुल। जब हम ये मछलियों को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि मछली अच्छा हेल्थी हो,
1: जी हाँ
0: ये सही तरीके से अपना तैर रही हो, किसी तरह का बीमारी ना हो। इन मछलियों को हम तालाब में जो ब्रूडर टैंक्स होता है वहाँ से निकाल करके एक अलग तालाब में रखते हैं, जो
1: अच्छा
0: प्रजनक मछली है या ब्रूडर्स टैंक्स कहते हैं उसमें रखते हैं,
1: अच्छा मतलब इनका अलग से रख रखाव करते
0: अलग से
1: हैं।
0: रख रखाव करते हैं वो, क्योंकि जब एक तालाब होता है उसमें कई तरह के मछलियाँ होंगे छोटी बड़ी सब कुछ,
1: जी
0: लेकिन
1: हाँ
0: उस उनके बीच में से हम ये 2 साल या उससे बड़ी मछलियों को सेलेक्ट करके अलग तालाब में रखते
1: अच्छा,
0: हैं,
1: ताकि उनका देखभाल मतलब अच्छा से कर
0: अच्छा से हो
1: सके।
0: सकते हैं।
1: और जो तालाब का जो ब्रूडर टैंक होता है उसमें पानी का परीक्षण वगैरह भी करते रहना
0: जी
1: चाहिए।
0: समय समय पर में ये तो बहुत ज़रूरी बात है, इसको देखना चाहिए। अगर पानी का क्वालिटी उसका जो ये क्वालिटी ख़राब हो जाए तो मछली उसमें मर भी सकती है, तो
1: अच्छा
0: महीने में एक आध बार जल वहाँ से लेकर के किसी भी नज़दीक का जो फिशरीज़ का या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो लेबोरेटरी है वहाँ जाकर उसका पीएच वगैरह देख ले, हो सके तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कितना है उसका देख ले हमारे कैरी में या फिशरीज डिपार्टमेंट के पास जा करके।
1: नागेश जी, जहाँ तक मछली उत्पादन में हार्मोनल इंजेक्शन का सवाल है, आपने कहा कि
0: जी
1: इंजेक्शन देकर अंडे पैदा करते हैं,
0: जी
1: बच्चे
0: हाँ
1: निकालते हैं, तो मछलियों को कितना ये इंजेक्शन देना चाहिए, इसके लिए भी कुछ मात्रा निश्चित होगी?
0: बिल्कुल। देखिए जब हम ब्रूडर डेवलपमेंट कर लिए, ब्रूडर मैनेजमेंट करके मई तक लेकर आए गए, उसके बाद में हमारा ये ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है बीज
1: अच्छा
0: उत्पादन के लिए, तो वहाँ पर में हम देखते हैं ये मछली को किस तरह का हार्मोनल इंजेक्शन दें।
1: जी
0: इसके लिए आजकल जो बाज़ारों में है ओवाप्रीम और ओवाटाइट, ये सिंथेटिक हार्मोन से ये अवेलेबल है, इसका दाम भी ज़्यादा नहीं है, 350 रुपये से 500 रुपये के बीच में एक वायल 10 ml का मिलता है। किसान भाई इनको लेकर के जो भी ब्रूडर्स मछली हैं मेल और फीमेल
1: नर और
0: नर और
1: मादा।
0: मादा जिसे कहते हैं हम, उनको तालाब में से पकड़ लें। मादा मछली के लिए 0.3 मिली लीटर से 0.5 मिली लीटर पर केजी बॉडी वेट
1: अच्छा
0: और मेल के लिए 0.2 से 0.3 मिली लीटर पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उनको देना चाहिए इंजेक्शन। ये इंजेक्शन दे सकते हैं बॉडी के पास में, देखिए एक लाइन होता है लेटरल साइड में, लेटरल
1: बगल
0: लाइन
1: बगल में
0: बोलते
1: जी।
0: हैं, वहाँ से लेकर के कॉडल फिन जो है पिछला दुम का हिस्सा है उसके ऊपर में
1: अच्छा
0: इसके इंजेक्शन हम देते हैं। जब इंजेक्शन लगा देते हैं तो हम एक हाफा में अगर 1 kg का फीमेल मछली रखते हैं तो उसके
1: जी
0: साथ में 2 मेल रखने चाहिए 1-1 किलो का। जब मछली अंडा देगी तो उसमें से जो नर मछली है अपना ये स्पर्म रिलीज करेगा,
1: अच्छा
0: इसका जो फर्टिलाइजेशन है एग फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, तो जब मछली अंडा देना शुरू करेगी उस सेम टाइम में इसका स्पर्म रिलीज होगा और एग फर्टिलाइज हो जाएगा,
1: अच्छा मतलब अंडे का निषेचन मतलब पानी में बाहर
0: पानी में बाहर
1: होगा।
0: हो जाता है। उसके बाद में 1 घंटा से 1.5 घंटा रुकने के बाद में जो वाटर हार्डनिंग ऑफ एग्स हम लोग बोलते हैं उसको, वो हो जाएगा और फिर आस्ते से मछली बाहर निकाल करके

0: ब्रीडिंग आपस से, और ये अंडे को एक प्लास्टिक बाल्टी में मग द्वारा निकाल करके रखा जा सकता है।
1: तो इसके बाद मतलब हैचिंग जो हापा है उसमें मतलब इसको ट्रांसफर भी करना
0: जी
1: पड़ेगा।
0: हाँ, जब ये अंडा बाल्टी में ले ले किसान भाई, उसके बाद में तालाब में हैचिंग हापा फिक्स करना चाहिए। उसमें एक इनर हापा और आउटर हापा होता हैचिंग हापा जो है उसमें। तो इनर हापा में 6 से 7 लीटर अच्छे अंडा हम डालते हैं, और ये अंडा डालने के बाद में करीबन 18 घंटे, 16 से 18 घंटे तक में उसमें से स्पॉन निकल जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम क्या करते हैं कि ये इनर हापा को हटा देते हैं,
1: अच्छा
0: क्योंकि उसमें जो गंद अंडा का जो छिलका होता है या जो खराब अंडा होता है वो उस इनर हापा में होता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। और ये जो स्पॉन है 3 दिन तक बाहरी भोजन कुछ नहीं लेता है, उसी में जो योक्सक होता है उसका खाता है उसी को। 72 आवर्स में उसका माउथ ओपनिंग होता है, उस समय ये खाने के लिए बाहरी भोजन का जरूरत पड़ता है, प्राकृतिक भोजन के लिए।
1: अच्छा
0: तो इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हम इस स्पॉन को लेकर के नर्सरी पॉन्ड में डालते
1: अच्छा
0: हैं।
1: अच्छा जो इनर हापा रहता है जिसमें अंडे को हम छोड़ते
0: जी
1: हैं,
0: हाँ
1: तो आपने कहा कि 10 से 12 घंटे के बाद बाहर ये अंडे से निकल
0: जी,
1: जाता है, जो छोटे छोटे स्पॉन है,
0: स्पॉन है
1: तो वो निकल के खुद अपने बाहरी हापा में चले जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: आउटर
0: क्योंकि
1: हापा
0: इनर
1: में।
0: हापा जो होता है इसमें मच्छरदानी में जैसे छिद्र होता है, छोटा सा छेद होता है, उसी तरह का उस छेद के द्वारा ये बाहर आउटर हैचिंग हापा में पहुंच जाते
1: और
0: हैं।
1: अंदर में सिर्फ वो जो सड़ा हुआ अंडा
0: अंडा का
1: या वो
0: छिलका
1: छिलका ये
0: या
1: सब रह जाता
0: वही
1: है,
0: रह जाता
1: उसको
0: है,
1: हटा देना
0: उसको हटा
1: चाहिए।
0: देता है। फिर इसके बाद में क्या करना चाहिए, जब 72 आवर्स का हो जाएगा माउथ ओपनिंग होगा, तो
1: अच्छा
0: इन स्पॉन को लेकर के हम एक नर्सरी तालाब में डालते हैं।
1: जी
0: उस नर्सरी तालाब को भी किसान भाई बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, नहीं तो ये तालाब ठीक तरह से तैयार नहीं होगा तो मछली बीज का उत्पादन उनको नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि जिस तरह हम धान का चारा डालते हैं क्यारी बना करके,
1: जी हाँ
0: उसी तरह का तालाब को भी अच्छी तरह सुखा दें। सुखा करके उसको फिर हल द्वारा जोत ले या पातू द्वारा खोद ले। उसके बाद में उसमें चूना डालना चाहिए, गोबर डालना चाहिए। चूना कितना डाले उसमें, 100 स्क्वायर मीटर तालाब है, उसमें से 3 से 4 किलो चूना चूना का
1: अच्छा
0: पाउडर डालना चाहिए, और कच्चा गोबर जो है 10 से 12 किलो उसमें डालना चाहिए। ये कब डालना चाहिए, जब तालाब में थोड़ा सा पानी
1: रहता
0: भर
1: है।
0: दे।
1: हाँ
0: उसके बाद में
1: बिल्कुल
0: फिर इस तालाब में जो 100 स्क्वायर मीटर एरिया का तालाब है उसमें 60,000 से 1 लाख मछली का बीज
1: छोड़
0: छोड़ना
1: सकते
0: चाहिए।
1: हैं।
0: और इसको छोड़ने के बाद में खाने के लिए हम धान का भूसी और जो बादाम का खली है उसका महीन पाउडर बना करके डेली सुबह और शाम पहले 4 दिन 400 ग्राम देना चाहिए, दो बराबर भागों में बांट करके 5वें दिन से इस भोजन को डबल कर देना चाहिए, अप टू 15 डेज़,
1: अच्छा
0: 15 to 20 डेज़। क्योंकि ये जो नर्सरी में हमारा जो मकसद है मछली बीज को फ्राई स्टेज तक लाने के लिए, ये सिर्फ 15 से 20 दिन का होता है।
1: अच्छा
0: तो इसके बाद में वो मछली बीज को उठा
1: या तो सीधे बेच
0: करके
1: सकते हैं या फिर अंगुली का बनाने के
0: या फिर
1: लिए,
0: अंगुली का बनाने के लिए उसको थिनिंग करना चाहिए, दूसरे
1: अच्छा
0: तालाब में और
1: बड़े
0: लाना
1: तालाब में
0: चाहिए।
1: छोड़ना चाहिए। तो नागेश जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार से इंजेक्शंस देने चाहिए और फिर उनको किस प्रकार से नर्सरी तालाब में ट्रांसफ़र करके वहाँ उसकी देखभाल करनी
0: जी
1: चाहिए।
0: हाँ
1: अब चलते चलाते आपने इतनी सारी बातें बताई, कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव भी दे दीजिए ताकि जो मछली बीज उत्पादन किसान भाई करें उनको सफलता ज़रूर मिले।
0: देखिए, मछली बीज उत्पादन में सबसे पहले प्रमुख बात है कि अच्छी तरह का ब्रूडर फिश होना चाहिए,
1: अच्छा
0: जो प्रजनक
1: प्रजनक,
0: मछली जिसको कहते हैं। उसके बाद में मछली बीज उत्पादन के लिए कम से कम 1 महीना पहले वहाँ नर्सरी तालाब का तैयारी करना चाहिए। अगर ये तालाब सुखा नहीं सकते हैं तो वहाँ पर मैं जालों द्वारा छोटे छिद्र वाला जो जाल होता है उसमें से मछली जो हानिकारक कीट या मछली
1: मछली
0: है वो
1: वगैरह हटा
0: सबको
1: दें।
0: निकलना चाहिए। तालाब में किसी भी तरह का खरपतवार नहीं होना चाहिए, ये जो नर्सरी तालाब है।
1: जी हाँ
0: अगर किसान भाई थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो तालाब के चारों तरफ में छोटे जो जाल होता है वो जाल लगा दे, जिससे कि सांप या मेंढक तालाब के अंदर
1: ना जा
0: ना
1: सके,
0: जा
1: क्योंकि
0: सके,
1: जो स्पॉन्स होते हैं बहुत छोटे होते
0: बहुत
1: हैं,
0: छोटे होते
1: देखभाल की
0: उसको
1: बहुत
0: खा
1: ज़रूरत
0: जाएंगे।
1: है। बिल्कुल
0: फिर तालाब में जो चूना मैंने बताया 2.5 किलो से 3 किलो तक डालना चाहिए, गोबर 10 से 12 किलोग्राम, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें प्राकृतिक भोजन
1: बनता है उनके
0: बनता
1: लिए।
0: है। जो नर्सरी तालाब है इसमें पानी 1 मीटर गहरा होना चाहिए,
1: अच्छा
0: अगर इससे ज़्यादा होने से तो मछली के बीज उसमें मर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेने के लिए नीचे से ऊपर तक आना आना पड़ता है इनको, और उसमें ज़्यादा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा शक्ति उसका इन्वेस्ट होगा, इसलिए तालाब का जो गहराई है पानी का 1 मीटर होना चाहिए। क्योंकि
1: बिल्कुल
0: इसमें 3 तरह का मछली हम डालते हैं, कतला, रोहू, मृगाल, अलग अलग एक तालाब में एक प्रजाति का डालते हैं।
1: अच्छा
0: तो

0: इतना ठीक है। फिर उसके बाद में हर रोज़ सुबह इनको सुबह और शाम दाना जरूर देना है। अगर एक दिन भी दाना नहीं दिया तो ये जो बीज का मास मोर्टलिटी, अधिक से
1: हो
0: अधिक
1: सकता
0: बीज
1: है।
0: मर जाएंगे। तो
1: अच्छा
0: डेली उनको भोजन देना चाहिए। और छोटे बीज जो है, कभी कभी देखिए नीलकंठ वगैरह जो पक्षी होता है, ये आकर भी पूरा खाते हैं उसको, बतख वगैरह तालाब में ना छोड़े, तो इनसे बचाव करना चाहिए। फिर जो मछली के बीज तालाब में हम छोड़ते हैं, इसको 15 से 20 दिन के लिए ही हम नर्सरी तालाब में छोड़ते हैं, उसके बाद में पकड़ करके किसान भाई को पालन के लिए बेच सकते हैं।
1: या फिर जैसा आपने बताया, अगर उनको
0: अंगुलिकाएं
1: फिंगरलिंग बनाना है
0: बनाया है तो
1: तो
0: उसमें
1: बड़े
0: उसको
1: तालाब में छोड़ना होगा।
0: छोड़ना होगा।
1: बिल्कुल सही। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि अभी आपको जितनी सारी बातें बताई गई हैं मछली बीज उत्पादन के बारे में, इस पर आप ज़रूर गौर करेंगे। और अभी मौसम है जैसे कि आपको बताया गया है, अगर आप मछली बीज उत्पादन के लिए इच्छुक हैं तो बताई गई बातों पर ध्यान रखकर मछली बीज उत्पादन करेंगे। नागेश जी, आप कार्यक्रम में आए, इतनी बातें हुई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: मछली बीज उत्पादन कुछ सुझाव, इस विषय में हमें बता रहे थे डॉक्टर नागेश राम, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बातचीत को आपने ध्यान से सुना होगा।
3: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture, and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting, through Prasar Bharati, proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes, or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast, or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: किसान भाइयों, आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती दिवस है, और इस संदर्भ में आइए अब हम कुछ वार्ता करेंगे, और वार्ताकार है MR राजेश्वरी।

महान संत गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति की अमर गाथा। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे महान संत कवि और समाज सुधारक की जिनका नाम भारतीय संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी, जब भी भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है तब गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण स्वतः हो जाता है। उन्होंने अद्भुत रचना रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के आदर्शों को घर घर तक पहुँचाया। आज भी भारत के करोड़ों लोग उनके दोहे, चौपाइया और हनुमान चालीसा श्रद्धा से पढ़ते और सुनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन आसान नहीं था? बचपन में ही उन्होंने माता पिता का साया खो दिया, कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया, लेकिन कभी अपने विश्वास और भक्ति को नहीं छोड़ा। यही संघर्ष उन्हें महान बनाता है। आइए उनके जीवन की यात्रा को विस्तार से जानते हैं। जन्म और बचपन। लोक मान्यता के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्वतः 1554 लगभग 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के राजापुर गांव में हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही उन्होंने रोने के बजाय राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उनका नाम रामबोला रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से उनका बचपन अत्यंत कठिन रहा। माता पिता का स्नेह उन्हें अधिक समय तक नहीं मिल सका। जीवन में अनेक कठिनाइयां आई, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उन्हें गुरु नरहरिदास का सात्रिधय मिला। गुरुजी ने उन्हें भगवान श्री राम की कथा सुनाई। यही कथा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली सिद्ध हुई। शिक्षा और संस्कार। तुलसीदास जी ने संस्कृत, वेद, उपनिषद, पुराण और भारतीय दर्शन का गहन

अध्ययन किया। वे केवल विद्वान ही नहीं बल्कि अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के थे। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। प्रिय श्रोताओं, आज के समय में जब शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन समझा जाता है, तब तुलसीदास जी हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो मनुष्य को विनम्र, दयालु और चरित्रवान बनाए। चलिए अब जानते हैं उनके विवाह और जीवन का सबसे बड़ा मोह। युवा व्यवस्था में उनका विवाह रत्नावली से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसीदास जी उनसे मिलने के लिए रात में तेज वर्षा और उफनती नदी को पार करके पहुंच गए। रत्नावली ने उन्हें देखकर कहा, आस्थी चर्म में दे मम तामे ऐसी प्रीत, होती जो श्री राम में तो काहे भव्य। इन शब्दों ने तुलसीदास जी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि संसार का प्रेम क्षण भंगुर है जबकि ईश्वर की भक्ति शाश्वत है। यही से उन्हें उनके वैराग्य और राम भक्ति की शुरुआत हुई। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी जीवन में एक वाक्य, एक घटना या एक प्रेरणा हमारी पूरी दिशा बदल देती है। तुलसीदास जी का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब तक हमने जाना कि कैसे रत्नावली के शब्दों ने तुलसीदास जी का जीवन बदल दिया। अब आगे बढ़ते हैं उस महान कार्य की ओर जिसने उन्हें अमर बना दिया, रामचरितमानस की रचना। तुलसीदास जी ने देखा कि भगवान श्री राम की कथा मुख्य रूप से संस्कृत में उपलब्ध थी जिन्हें सामान्य लोग नहीं समझ पाते थे। उन्होंने निश्चय किया कि श्री राम के आदर्श हर व्यक्ति तक पहुँचने चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ है। इसमें आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा और आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा मिलती है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड, सातवा उत्तर कांड। आज भी भारत के लाखों घरों में इसका पाठ श्रद्धा से किया जाता है। हनुमान चालीसा की रचना। प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले स्रोतों में से एक हनुमान चालीसा क्यों है? तुलसीदास जी ने इसमें संकट मोचन हनुमान जी की महिमा का अत्यंत सरल और प्रभावशाली वर्णन किया है। यह केवल 40 चौपाइयों का संग्रह नहीं बल्कि विश्वास, साहस और भक्ति का संदेश है। कहा जाता है कि सच्चे मन से इसका पाठ करने से मन में आत्मविश्वास, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसीदास जी का संदेश। तुलसीदास जी ने हमें अपने साहित्य के माध्यम से समाज को अनेक शिक्षाएं दी है। पहला, सत्य का पालन करें। दूसरा, माता पिता और गुरु का सम्मान करें। तीसरा, दूसरों की सहायता करें। चौथा, अहंकार का त्याग करें। पांचवा, सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखें। छठा, धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी है। उनका मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र है। अब जानते हैं समाज पर प्रभाव। तुलसीदास जी के साहित्य ने भारत समाज को नई दिशाएं दी है। उनकी रचनाओं ने गांव-गांव में रामकथा, भजन, कीर्तन और रामलीला की परंपरा को मजबूत किया। उन्होंने लोगों को बताया कि धर्म का सार मानवता, सेवा और प्रेम है। पिछले भाग में हमने उनकी महान कृति रामचरितमानस और हनुमान चालीसा के बारे में जाना। आइए अब उनके जीवन से जुड़ी कुछ प्रेरणादायक प्रसंगों और उनकी अमर शिक्षाओं पर चर्चा करते हैं। तुलसीदास जी और भगवान श्री राम के दर्शन। लोक कथाओं के अनुसार तुलसीदास जी का एक ही सपना था, भगवान श्री राम के प्रत्यक्ष दर्शन करना। वे दिन रात श्री राम का नाम जपते, कथा सुनाते और लोगों में भक्ति का प्रचार करते। कहा जाता है कि उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर पवन पुत्र हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और चित्रकूट जाने का मार्ग बताया। चित्रकूट की पावन भूमि पर एक दिन दो तेजस्वी राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर निकले। तुलसीदास जी उन्हें पहचान न सके। बाद में हनुमान जी ने बताया कि वे स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण थे। यह सुनकर तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने और भी अधिक प्रेम और समर्पण के साथ राम भक्ति का

मार्ग अपनाया। प्रिय मित्रों, आज के समय में जब जीवन तेज गति से बदल रहा है, तब तुलसीदास जी की संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रिय मित्रों, आज के समय में जब जीवन तेज गति से बदल रहा है, तब तुलसीदास जी का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वे हमें सिखाते हैं, लक्ष्य पर विश्वास रखो, कठिनाइयों से मत डरो, अच्छे संस्कार कभी मत छोड़ो, ज्ञान के साथ विनम्रता भी आवश्यक है। सफलता तभी सार्थक है जब उसमें नैतिकता हो। श्रोताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी केवल एक महान कवि नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति की आत्मा थे। उन्होंने अपने शब्दों से करोड़ों लोगों के जीवन को प्रकाशमय बनाया। आइए उनके बताए मार्ग सत्य, सेवा, प्रेम और भक्ति को अपने जीवन में अपनाएं। इसी प्रेरणा के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।

0: अभी आप गोस्वामी तुलसीदास जयंती के विषय में ये वार्ता सुन रहे थे और वार्ताकार थी M.R. राजेश्वरी।
1: क्या आपके जिले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर जिले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं, तो 31 अगस्त 2026 तक वेव्स OTT ऐप के माई वेव सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने जिले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, ब्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए ₹50,000, राज्य स्तर पर ₹2,00,000 तथा राष्ट्रीय स्तर पर ₹5,00,000 तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने जिले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से ना जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
0: किसान साथियों, अब वक्त हो चला है आज पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर बताने का। और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था, बोड़ो मिश्रण में क्या होता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बोड़ो मिश्रण में तूतिया, चूना और पानी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथियों ने इस प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर लिया होगा। किसान साथियों, आज के इस कृषि जगत कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन कल शाम 6 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम दर्द भरे नगमे।

इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टूटे हुए दिल की आवाज कोई सुनता नहीं, दर्द कितना भी हो हर कोई समझता नहीं। हम मुस्कुराते रहे दुनिया को दिखाने के लिए, वरना आँखों में छिपा दर्द कभी कम होता नहीं।

जुदाई का दर्द भी अजीब होता है, पास ना होकर भी दिल के करीब होता है। जिसे भूलना चाहें हम, हर पल उसी यादों में दिल डूबा रहता है।

जिसे अपना समझा वही दूर चला गया, दिल में था जो वही दिल तोड़ गया। हम तो आज भी उसकी यादों में हैं, पर वो हमें अपनी यादों से मिटा दिया।

श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम दर्द भरे नगमे संपन्न होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति।

जलियानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, दिल ने फिर याद किया। युवाणी में 7:30 पर कार्यक्रम सुनिए गीतों भरी कहानी, मानवता ही हमारी पहचान है। रात 8 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार का समय रहेगा रात 8:30। रात 10 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए सरगम। रात 10 ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल प्रातः 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा धान की खेती। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा शक्ति शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए सवेरे 6:30 पर। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागनी। 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में 7:30 पर पर्यावरण कार्यक्रम के तहत राजा राम की वार्ता सुनिए पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सी सरोजा और सी ललिता का गायन सुन पाएंगे। सुबह 10 व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए SMS माय चॉइस। प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT दिन के 11:00। 11:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत। तेलुगु कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 12:00। 12:30 पर सुनिए मलयालम कार्यक्रम। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारी स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी नॉन स्टॉप म्यूजिक के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिए यूं ही गाते रहो 3:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4:00 निकोबारी कार्यक्रम के साथ। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे का समय रहेगा 4:30। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बाहरों की शाम 4:45 पर।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम की 7 बजे हैं। अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

0: अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार इस ब्रेक के बाद।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल को लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को किया शामिल। प्रश्न पत्रों की गहन जांच के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू होगी। सांसद विष्णुपद रे ने नव नियुक्त मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात की। विप समूह के कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। और राजधानी श्री विजयपुरम में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान ने आयोजित किया यूथ कनेक्ट कार्यक्रम, युवाओं को साइबर सुरक्षा और

नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। सांध्य समाचारों के साथ मैं अनीता क्रिकेटा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के क्रियान्वयन की समीक्षा की। श्री जोशी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन और संरचित तैयारी रणनीतियों को देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाकर एक सशक्त राष्ट्रीय मंच का निर्माण करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के दफ्तरों के लिए सीआईएसएफ की सुरक्षा भी ली जाएगी। एनटीए ने यह फैसला शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ितों का अस्पताल में भर्तीकरण एवं सुनिश्चित उपचार पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर और कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह योजना 13 फरवरी 2026 को शुरू की गई थी। योजना के तहत मोटर वाहन से हुई सड़क दुर्घटना में घायल पात्र व्यक्ति को अधिकतम 7 दिनों तक 1,50,000 रुपये तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य दुर्घटना के बाद गोल्डन ओवर में आर्थिक बाधाओं के बिना आवश्यक चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करना है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पीएम राहत के तहत लगभग 7 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें जीबीपन अस्पताल, बीजीआर अस्पताल कार निकोबार, आरपी अस्पताल मायाबंदर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर, रंगत ननकौड़ी और बम्बू फ्लैट शामिल है। मायाबंदर के महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय में 9 से 17 अगस्त तक एनएसएस की इकाइयां 1 और 2 ने राष्ट्रीय हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए। अभियान की शुरुआत नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से दानापुर जंक्शन तक तिरंगा रैली से हुई, जिसे उत्तर एवं मध्य अंडमान के उपायुक्त सुशांत पाधा ने हरी झंडी दिखाई। एनएसएस स्वयंसेवकों ने रामपुर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में 100 घरों को तिरंगे वितरित किए। 17 अगस्त को समूह नृत्य, समूह गान और भारतीय स्वतंत्रता विभाजन की पीड़ा विषय पर भाषण प्रतियोगिता के साथ अभियान का समापन हुआ। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आरबीआर मूर्ति ने युवाओं में देशभक्ति और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है मुलाकात और जागरूकता कार्यक्रम। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद विष्णु पदरे ने आज नव नियुक्त मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। मुलाकात के दौरान द्वीपों के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें डोमिसाइल नीति, ओबीसी आयोग के गठन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सुधार, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने, उत्तर एवं मध्य अंडमान में NH4 की खराब स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने जैसे विषय शामिल थे। सांसद ने एनएम्स में एम्स या अन्य प्रमुख केंद्रीय संस्थान की अधिक भागीदारी की संभावना पर भी चर्चा की। श्री रे ने मुख्य सचिव को द्वीपों के विकास से जुड़ी पहलुओं में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। राजधानी श्री विजयपुरम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण संस्थान ने आज युवाओं के लिए यूथ कनेक्ट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। इसमें टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय, अंडमान लॉ कॉलेज और अंडमान कॉलेज के 50 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता, साइबर सुरक्षा, नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। युवाओं को साइबर अपराध

ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी खबरों और डीप फेक से सावधान रहने की सलाह दी गई। साथ ही खेल, कौशल विकास और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया। उच्च शिक्षा निदेशक आदित्य सांगोत्रा ने कल मायाबंदर स्थित महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय का दौरा कर शैक्षणिक और छात्रावास सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा भूगोल के विद्यार्थियों को भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान की मूल बातें समझाई। श्री सांगोत्रा ने बालक और बालिका छात्रावासों का निरीक्षण किया। उन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और महाविद्यालय के पुस्तकालय का भी निरीक्षण किया। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए परामर्श आयोजित की जाएगी। डॉलीगंज, बकुमतला और एरोंग स्थित सरकारी आईटीआई में विभिन्न ट्रेडों की रिक्त सीटें सामान्य मेरिट सूची के आधार पर भरी जाएंगी। डॉलीगंज में 24 अगस्त, एरोंग में 25 अगस्त और बकुमतला आईटीआई में 27 अगस्त को सुबह 9:30 बजे परामर्श होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध सूचना देख सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र में आज दूरी शिक्षा और ओपन लर्निंग सिस्टम पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन लर्निंग सिस्टम इन इंडिया, हायर एजुकेशन इन अ डिजिटल एज के लेखक इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. उदय कुमार है। इस पुस्तक में भारत में डिजिटल युग में दूरस्थ एवं मुफ्त शिक्षा प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। कार्यक्रम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। पोर्टब्लेयर में 24 अगस्त से 7 सितंबर तक सर्किट कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा और न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी मामलों की सुनवाई करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शतरंज खिलाड़ी WCM कस्तूरी बाई आर ने मुंबई में कल संपन्न हुई एशियन जूनियर गर्ल्स रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया है। कस्तूरी ने भारत और अन्य एशियाई देशों की मजबूत खिलाड़ियों के बीच यह उपलब्धि हासिल की है। चिंथे लॉन्ग रेंज और बैफल रेंज में 22 और 27 अगस्त को फायरिंग अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक और शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे तक होगा। इस दौरान नागरिकों से संबंधित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री की निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग पहल को लेकर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को किया शामिल। प्रश्न पत्रों की गहन जांच के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू होगी। सांसद विष्णुपद रे ने नव नियुक्त मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती से मुलाकात की। द्वीप समूह के कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। और राजधानी श्री विजयपुरम में पुलिस प्रशिक्षण संस्थान ने आयोजित किया यूथ कनेक्ट कार्यक्रम। युवाओं को साइबर सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।
2: बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत,
3: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी,
4: माझी पॉलिसी माझा हाथी।
0: बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक,
5: मारी पॉलिसी मारे हाथ।
0: बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर,
6: यन पॉलिसी यन कयन।
0: मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में अगले 7 दिनों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि आज से 22 अगस्त 2026 तक अंडमान तथा निकोबार तट के आसपास खराब मौसम रहने की संभावना है। हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तथा ये बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि आज से लेकर 22 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी भारत सीमा कल 20 अगस्त को सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान के लिए प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल ही रात्रि 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल 20 अगस्त को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप की यात्रा पर जाएगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए चलेगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा 3:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही शाम 4:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए प्रस्थान करेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और यह जलयान अगले दिन शुक्रवार 21 अगस्त को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। अब सुनिए जन सूचनाएं। दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने भूमि अतिक्रमण के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। प्रशासन ने क्षेत्र के ऐसे कई स्थानों से गैरकानूनी रूप से किए गए भूमि कब्जे को मुक्त कराया है। आम लोगों से भी इस मामले में सहयोग की अपील की गई है। सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण की सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 03192240127 और 03192238881। सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 9531888844। प्रशासन द्वारा सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

अभी आप फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, दिल ने फिर याद किया। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

कार्यकर्ताओं और लोगों को समर्पित है जो संकट, युद्ध, प्राकृतिक आपदा और कठिन परिस्थितियों में जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। यह दिन हमें मानवता, करुणा और सहयोग का महत्व समझाता है। हमें बिना किसी भेदभाव के पीड़ितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मानवता केवल भावना नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझकर उनके साथ खड़े होने का संकल्प है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आज हम मना रहे हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। दोस्तों, यह दिवस फोटोग्राफी की कला और उसके महत्व को समर्पित है। एक तस्वीर केवल किसी क्षण को कैद नहीं करती, बल्कि उस समय की भावनाओं, घटनाओं और यादों को भी सुरक्षित रखती है। फोटोग्राफी ने पत्रकारिता, कला, विज्ञान और इतिहास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मोबाइल कैमरों के कारण फोटोग्राफी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुकी है। यह दिवस हमें तस्वीरों के माध्यम से दुनिया को देखने और समझने की प्रेरणा देता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आज है हजारी प्रसाद द्विवेदी जयंती। दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महान लेखक, निबंधकार, आलोचक और विद्वान थे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 19 अगस्त सन 1907 को उत्तर प्रदेश के बालिया जिले में हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा और कबीर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली और विचारपूर्ण थी। साहित्य के प्रति उनके योगदान के कारण उन्हें हिंदी जगत में सदैव सम्मान पूर्वक स्मरण किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। तो दोस्तों, आज इस माह का तीसरा बुधवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम गीतों भरी कहानी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 19 अगस्त है और आज हम विश्व मानवीय दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, यह दिवस उन सभी मानवीय

दोस्तों कहते हैं, इंसान की पहचान उसके धन, पद या प्रसिद्धि से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति उसकी संवेदनशीलता से होती है। किसी ज़रूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी दुखी का सहारा बनना और बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना ही सच्ची मानवता है। आज के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जब हम अपने सुख दुख में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों के दर्द को महसूस करना भूलते जा रहे हैं, ऐसे समय में मानवता का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुछ इसी प्रकार है, जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा इंसान होना है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मानवता ही हमारी पहचान। दोस्तों, एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए बहुत प्रेम था। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश होने लगी। रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति फिसलकर गिर गए। कई लोग वहां से गुजरते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। आरव ने तुरंत उन्हें उठाया, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और उनके घर तक छोड़ आया। वृद्ध ने भावुक होकर कहा, बेटा, आज तुमने केवल मेरी मदद नहीं की, बल्कि इंसानियत पर मेरा विश्वास भी बचाया है। आरव मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुसीबत में किसी के काम आना ही तो सच्ची मानवता है ना।

दोस्तों, कुछ दिनों बाद गांव में एक गरीब परिवार का घर आग लगने से जल गया। उनके पास रहने और खाने तक का साधन नहीं था। गांव के कुछ लोग केवल सहानुभूति जताकर आगे बढ़ गए, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर उस परिवार के लिए कपड़े, भोजन और रहने की व्यवस्था की। किसी ने पैसे दिए, किसी ने अनाज और किसी ने अपना समय। धीरे धीरे पूरा गांव उस परिवार के साथ खड़ा हो गया। उस दिन लोगों को समझ आया कि मानवता केवल बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं है, किसी के दुख को अपना समझकर उसके लिए एक छोटा सा कदम बढ़ाना ही सच्ची इंसानियत है।

0: दोस्तों, अगले दिन गांव में बाहर से आए एक मजदूर को कुछ लोगों ने केवल इसलिए अपमानित किया क्योंकि वह दूसरे राज्य से आया था। आरव ने यह सब कुछ देखा और उसने सभी को समझाया कि इंसान की पहचान उसकी भाषा, जाति, धर्म या स्थान से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और व्यवहार से होती है। उसने मजदूर को सम्मान से अपने साथ बैठाया और भोजन कराया। धीरे धीरे दूसरे लोग भी अपनी गलती समझने लगे। जिस व्यक्ति को कुछ समय पहले पराया समझा जा रहा था, वही कुछ दिनों में गांव के लोगों का अपना बन गया। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, जहां इंसानियत जीवित रहती है, वहां किसी को पराया नहीं माना जाता। दोस्तों, सच ही है, हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा इंसान होना है।
1: नफ़

दोस्तों, समय बीतता गया और आरव की छोटी सी पहल पूरे गांव की सोच बदल चुकी थी। अब कोई भूखा होता तो लोग भोजन बांटते, कोई बीमार पड़ता तो उसकी मदद के लिए सभी आगे आते और किसी जरूरतमंद बच्चे की पढ़ाई रुकने नहीं दी जाती। गांव में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। मुसीबत किसी एक की हो सकती है, लेकिन समाधान सब मिलकर खोज सकते हैं। आरव ने लोगों से कहा, हमारी संपत्ति, पद और सफलता हमें बड़ा नहीं बनाती, हमें बड़ा बनाता है हमारा व्यवहार और दूसरों के प्रति हमारा प्रेम। दोस्तों, वास्तव में मानवता ही वह गुण है जो इंसान को इंसान बनाता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में दया, प्रेम, सहयोग और संवेदना को अपनाना चाहिए।

0: क्या आपके ज़िले की कोई ऐसी खास पहचान है जिस पर पूरे देश को गर्व हो? अब उसे राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जेम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य देश के हर ज़िले की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, हस्तशिल्प, स्थानीय व्यंजन, प्राकृतिक सौंदर्य और प्रेरणादायक कहानियों को डिजिटल माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाना है। यदि आप एक उभरते हुए डिजिटल क्रिएटर हैं तो 1 अगस्त से 31 अगस्त 2026 तक वेव्स ओटीटी ऐप के माई वेव्स सेक्शन में जाकर अपना क्रिएटर प्रोफाइल बनाइए और जेम्स ऑफ इंडिया के अंतर्गत अपने ज़िले पर आधारित मौलिक वीडियो, रील, डॉक्यूमेंट्री, व्लॉग या पॉडकास्ट अपलोड कीजिए। चयनित प्रतिभागियों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर प्रत्येक पुरस्कार के लिए 50,000 रुपये, राज्य स्तर पर 2,00,000 रुपये तथा राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपये तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो देर किस बात की, अपने ज़िले की अनमोल पहचान को देश के सामने लाने का यह अवसर हाथ से न जाने दे। जेम्स ऑफ इंडिया से जुड़िए और अपने ज़िले को राष्ट्रीय पहचान दिलाइए।
1: तो दोस्तों, आज की हमारी गीतों भरी कहानी कार्यक्रम में हम सुन रहे थे कहानी मानवता ही हमारी पहचान, और इसी के साथ युववाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो दोस्त लताराज नंदिनी को इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि।

अभी युवा दोस्त अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजने वाले हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। देव कोहली के शब्द हैं, संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और फिल्म का नाम है मेरे सपनों की रानी।

0: Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality, and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level, and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं यशवंत फिल्म का एक गीत। कुमार सानू की आवाज है, समीर ने इस गीत को लिखा है, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के अंतर्गत असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन में लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC का एक पद उपलब्ध है। इस पद के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के आधार पर की जाएगी। पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। 6 महीने या उससे अधिक की निरंतर सैन्य सेवा कर चुके पूर्व सैनिकों की वास्तविक आयु से उनकी सैन्य सेवा की अवधि घटाकर आयु की गणना की जाएगी। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार आयु में

0: छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित पद के लिए आवेदन करने वाले एससी एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को केवल जाति के आधार पर आयु में छूट नहीं मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति आवश्यक है। पद का वेतन 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक लेवल 2 के अनुसार होगा। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के साथ अपना आवेदन एयर ऑफिसर कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन तेजपुर असम 784104 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार समाचार के 1 से 7 अगस्त 2026 के अंक में प्रकाशित भारतीय वायुसेना के विज्ञापन को देखें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: India's greatest treasures are not just its monuments, they are its people, culture and untold stories. The Ministry of Information and Broadcasting through Prasar Bharati proudly presents Gems of India, a national initiative inviting creators to showcase the unique identity of their districts. Whether it's culture, heritage, tourism, festivals, cuisine, handicrafts, local heroes or hidden destinations, your story matters. Create a 1 to 3 minute video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India, because every district has a story worth telling.
2: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG. With 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio, every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
3: Cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, अब सुनिए गौरव गान।

0: अभी आप संवेद स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, गौरव गान।
1: Do you play for the rush or do you play it smooth? Lead every play with the new Brezza, now available with the exciting Turbo Booster Jet, refined K15C engine and underbody SCNG with 5-star safety rating, superior performance and features like ventilated seats, new 10.1-inch infotainment screen with premium audio. Every road is your playground. The new Brezza, now available at an introductory starting price of Rs. 7.39 lakh. Book a test drive today at your nearest Maruti Suzuki Arena showroom.
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी।

0: अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमरीका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल्ड टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की 4थी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की 4थी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की 3री और 4थी लाइन तथा कटक पारादीप की 3री तथा 4थी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है, 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के 4थे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशंस, ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है, ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
3: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should

0: use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand, and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जाँच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जाँच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के 2 लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज

0: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: New Delhi, the Chief Minister here, the government here.
2: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
1: I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here.
0: श्री गौर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है।

0: के अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियेला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके, दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 5 infrastructure projects worth over 13,000 crore rupees. Clears 4 railway multi-tracking projects across 4 states, also gives nod to widening of National Highway 22 in Bihar. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari says high quality and cost-effective infrastructure top priority, says centre will review subcontracting norms. US Ambassador Sergio Gore hails steps taken by centre and Jammu and Kashmir governments to improve security in the Union Territory. President Draupadi Murmu calls for accurate, credible and citizen-centric government communication in social media era. Iran warns Gulf nations against facilitating US military operations. India beat Pakistan 5-3 to qualify for second round of men's FIH Hockey World Cup in the Netherlands. And in men's cricket, India seal a commanding 165-run win over hosts Sri Lanka in Gaul Test. Manav Sutar claims maiden 10-wicket haul.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है सार्वजनिक बैंकों का आधुनिक परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: सरकारी बैंकों की तरफ से दो दिन पहले ही एक मंथन किया गया और
3: साथ ही वित्त मंत्रालय ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और एक रूपरेखा तय हुई कि आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर को किस तरह से काम करना है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र कुमार भसीन साहब मौजूद हैं, जो जोनल हेड हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के, और साथ ही साथ अश्विनी राणा जी भी मौजूद हैं जो पुराने बैंकर हैं। आप दोनों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 2 अक्टूबर से जो युवाओं के लिए एक महीने का विशेष बैंकिंग अभियान शुरू होने जा रहा है, इस अभियान के जरिए युवाओं को बैंकिंग से जोड़ने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई?
4: या नमस्कार। सो बेसिकली जो दो दिन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो 7 थीम थे, उन थीम में से एक सेकंड थीम था जो बैंकिंग फॉर यूथ करके था, और जो अभी इवन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन मैम ने भी अपने इनॉग्रल सेशन में बोला कि 29

0: 10% जो पॉपुलेशन यंग पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री की है एंड 15 टू 29 ईयर्स ऑफ एज के, तो जो ये लोग यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बैंकिंग को समझते हैं, तो अभी जो हमारे जिस तरह के 7 मुद्दे भी हैं और जिस तरह बैंकिंग कंसोलिडेशन करके मेन पर्पस था कि 4 बड़े बैंक हो, और इवन प्रधानमंत्री ने भी इंडिपेंडेंस डे के उसमें कहा कि उसमें से एक ऐसा बैंक होना चाहिए जो टॉप 5 ग्लोबल में आए, तो उसी मुद्दों को लेते हुए देखा जाए तो ये कि यंग जो जनरेशन है जो बैंकिंग को समझती है और बैंकिंग प्रोडक्ट को लाती है, तो इसीलिए ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि 2 अक्टूबर से जो एक यूथ कैंपेन दैट इज अ बैंकिंग फॉर यूथ करके लाया जाए। और अभी पब्लिक सेक्टर बैंक को जरूरत है कि हम वापस कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज और स्किल सेंटर में जाएं जहां पे वहां के लोगों को, बच्चों को, यंग जो आप कह रहे हैं कि जेन जी, इनको फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाया जाए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट में जाते हैं, अपना एम्प्लॉयज हैं, तो उससे एक नया लाइफ साइकिल अप्रोच जो हम अभी देख रहे थे कस्टमर का, हम सोचते हैं कि जब से वो खाता खोलता है लाइफ साइकिल अप्रोच, बट अब लाइफ साइकिल की जगह हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की जरूरत है कि ताकि ये कैंपेन का भी यही फोकस है कि जैसा ज्यादा लोग टैक्स सेवी हैं यंग पीपल, और 66% यूपीआई ट्रांजेक्शन जो 18 से 29 साल के बच्चे, क्योंकि ये मोबाइल बैंकिंग और ये बैंक में कम विजिट करते हैं तो थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, तो इसी को ये सोचते हुए कि यूपीआई और इन बैंकिंग प्रोडक्ट्स को बढ़ाते हुए, और मेनली जो हमारा विकसित भारत 2047 का भी यही है कि स्ट्रॉन्ग बैंक बने, बड़े बैंक बने, और इसीलिए अगर देखा जाए तो इसके लिए हमें यंग जनरेशन जो आज खाता ही नहीं और अदर तरह के क्रेडिट ट्रांजैक्शन में यूज करे, तो ये पर्पस है जिससे मतलब एक नया वेव बैंकिंग इंडस्ट्री में आएगा।
1: बिल्कुल अश्विनी राज जी, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपने एक लंबा समय दिया है बैंकिंग व्यवस्था को, तो 16 साल से ऊपर के युवाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने के लिए बैंक जमीनी स्तर पर क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या चुनौतियां हैं, और क्या आप एक कमी देखते हैं जो बैंकों की तरफ से युवाओं को आकर्षित करने के लिए अभी है और उसे आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा?
2: देखिए, एक अच्छा है कि भाई सरकार युवाओं को बैंकिंग के साथ जोड़ने की बात कर रही है। जैसे नरेंद्र जी ने कहा कि भाई बैंकों के साथ युवाओं को आज जोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको जोड़ना चाहिए था स्कूल टाइम से। स्कूल में जब बच्चा एंटर होता है उसी समय उसका अकाउंट खुले, उसकी जो फीस है उसी अकाउंट में से चली जाए, तो उसको एक फीलिंग आती है कि मैं, हाँ, मैं पर्सनल बैंकिंग कर रहा हूँ। और आज का जो युवा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले बैंकिंग थी क्या, बैंकिंग विद स्माइल। आज क्योंकि वो बैंक जाता ही नहीं है, बहुत ऐसे युवा हैं कि खाता खोलने से 10-10 साल हो गए, वो बैंक कभी नहीं गए, वो सिर्फ ऐप से ही। लेकिन सरकारी बैंकों को उस जो जनरेशन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो जो एप्स हैं या टेक्नोलॉजी है उसको आज के युग में लाना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक उसमें बहुत पहले से हैं, तो इसलिए बैंकों को उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्व करना होगा, और उसके लिए वैसी ही आपको ह्यूमन कैपिटल, एचआर जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, वो वैसे ही चाहिए। मशीनें सिर्फ नहीं काम कर सकती, ह्यूमन कैपिटल का भी टच बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, तो मशीनें काम नहीं कर सकती और एक बैंकिंग व्यवस्था में ऐसे काम करने वाले लोग होने चाहिए जो जेन ज़ी के हैं या जो उनके कस्टमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी बातों को समझे और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे। और नरेंद्र जी, सरकार युवाओं के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की भी बात कर रही है, ये इसकी रूपरेखा किस तरह की हो सकती है, और खासतौर पर युवाओं की अगर हम बात की जाए तो उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं इसके जरिए?
0: देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि, और अश्विनी जी ने सही बोला कि राइट फ्रॉम स्कूल डेज से अगर बच्चों को बैंकिंग, तो यही थीम इस जो अपना कैंपेन है कि कैंपस टू कैरियर, जो स्कूल से कैरियर और कैंपस टू कैरियर। और जो आज का जो यंग जनरेशन है वो जैसे हमारे फॉर्म्स हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, लंबे लंबे फॉर्म है, साइन करना, क्रेडिट, अब ये जो बच्चे आज के जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनमें आइडियाज होंगे, और ये यंग बच्चे एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, अब उसमें ये प्रॉब्लम आएगी कि अगर यंग बच्चा, उसका कोई क्रेडिट तो हिस्ट्री होगी नहीं, ना सिविल होगा कि पहली बार लोन रहा, तो इसलिए हमें डॉक्यूमेंटेशन और क्रेडिट कोलेटरल से उनके आइडियाज, उनके कैश फ्लो, जो उनके उस चीजों को देखना पड़ेगा। और मेनली ये कि इस कॉन्फ्रेंस का जो यंग जनरेशन का एक नया इनिशिएटिव लिया जो है, और उसी से ये कि आगे नए नए आइडियाज आएंगे, तो जो अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें जाना है ग्लोबली, तो यंग, क्योंकि हमारे कस्टमर भी यंग जनरेशन है, तो यंग प्रोडक्ट है, और जैसे अश्विनी सर ने बोला कि अब कस्टमर आता नहीं है बैंक, तो कस्टमर आएगा नहीं, तो ह्यूमन टच, और पर ह्यूमन टच बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल ह्यूमन, जहां बैंकिंग है या कस्टमर है, दोनों ह्यूमन बीइंग है। तो इसलिए यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट करना है, थ्रू मोबाइल, थ्रू इवन सीधर मैम ने ये भी बोला कि उसमें अट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लाइफस्टाइल वाउचर्स देते हैं या रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं, वेलनेस है, तो इन चीजों को सारे नए प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ताकि यंग जनरेशन जो कल का जो

0: फ्यूचर है बैंकिंग का वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सके।
1: बिल्कुल, ताकि भविष्य सुदृढ़ रहे उस दिशा में ये कोशिश की जाएगी। अश्विन जी, एक बड़ी चुनौती ये है कि आज का यूथ इंटरनेट पे रहता है, तमाम सोशल मीडिया एप्स पर रहता है, और उसके जरिए कहा जाए तो फायदा होने के बजाय कई मौकों पे नुकसान भी हो जाता है। युवा गुमराह हो जाता है और वो तमाम अलग अलग एप्स जिनके कोई क्रेडेंशियल्स नहीं होते हैं वहां से भी वो लोन ले लेता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि फॉर्मल जो बैंकिंग व्यवस्था से उसे जोड़ दिया जाएगा तो युवा, चाहे पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, बिजनेस की बात हो या निवेश जैसे अलग अलग वित्तीय फैसले हो, उन जरूरतों को इन बैंकों के जरिए पूरा किया जा सकता है?
2: नहीं, बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है और उनके पास लिक्विडिटी भी है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनको फंड्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो। बस ये है कि भाई उसके अंदर उनकी समय के अनुसार अपने आप में बदलाव, ये जरूरी है। और जहां तक आप ऐप की बात कर रहे हैं, ऐप के लिए सरकार को एक बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा जैसे और चीजों के लिए उठाते हैं, मेटा है या दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी प्लेटफॉर्म है, कि भाई इस तरह की ऐड आती ही क्यों है। अब मैं बता रहा हूं आपको, बैंक वाले कोई पेंशनर का कार्ड इशू नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे फेसबुक पर हर बैंक की ऐड आ रही है कि आप जो है पेंशनर हैं तो आप इस बैंक का अपने पेंशन कार्ड बनवा लीजिए। और लोन लेने की और इतने भ्रामक प्रचार हैं, उसके ऊपर सरकार को सख्त कानून बना के ताकि लोग उसमें ट्रैप ना हो जाए। भाई पढ़ा लिखा युवक तो समझ जाएगा, लेकिन जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे भी बहुत युवक हैं, वो उस झांसे में ना आए, वो भी हमारी बैंकों की और सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, तो हाल ही में सरकार ने तमाम ऐसे एप्स को बैन किया है और इस तरह के ऐड भी बैन किए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में इन नियम कानूनों को और सख्त किया जाए। नरेंद्र जी, इस दो दिनों के मंथन की अगर हम कहें तो उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या बैंक सिर्फ इस नई व्यवस्था के जरिए खाता खोलने पर ही उनका फोकस रहेगा, या युवाओं को लंबे समय तक अपने साथ जोड़ने की भी कोई फुल प्रूफ एक योजना, एक प्लानिंग की जा सकती है इसके जरिए?
0: नहीं, कॉन्फ्रेंस जैसे मैंने बताया कि 7 थीम थे, 7 मुद्दे थे इसमें, जिसमें डिपॉजिट मोबिलाइजेशन पहला मुद्दा था, जिसमें जो कि बैंक के लिए कासा और एफडी वगैरह जो होता है उसी के बेस पे और क्रेडिट होता है। सेकंड जो बैंकिंग फॉर यूथ था, फिर इन्वेस्टमेंट साइकिल, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर जो कि इंटरनेशनल की तरफ जाना है तो हमें बड़े बड़े एग्रीकल्चर पे फोकस तो है ही, और इवन क्रेडिट कार्ड बिजनेस को भी रिवैम करेंगे नए तरीके से, और फिर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो सभी जो मुद्दों का यही था कि इसमें अब एक्शनेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए और पीपल सेंट्रिक आउटकम, मतलब कि जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने देखा होगा बजट फरवरी में एक हाई पावर कमेटी बैंकिंग के लिए एक बनाने की जो हुई थी, तो बेसिकली उसी का अनाउंसमेंट इवन फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेशन बोला कि आजकल में अनाउंस हो जाएगा, और उसी के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें 125 एमडी सीएमडी बड़े बड़े लोग आए, जो यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ दो दिन का, वो एक मटेरियल रेडी हो रहा है जो मटेरियल उस कमेटी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो मेनली उसमें से यूथ का, जैसे आपने बताया कि यही था, FM का भी था कि यूथ को हमें जल्दी कैप्चर करना पड़ा, ये नहीं कि हम उनको वेट करने की जब उनकी जॉब लग जाए या फर्स्ट सैलरी अकाउंट खोले। और जैसे अश्विन ने बताया कि बैंकिंग के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट फ्रॉम द एजुकेशन लोन से लेके स्किल डेवलपमेंट, आजकल अप्रेंटिसशिप भी आ रही है, इंटर्नशिप्स भी स्टूडेंट को दिया जाए ताकि उनको यंग कस्टमर को एजुकेशन, फाइनेंस से लेके फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट, पहला क्रेडिट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो वेल्थ क्रिएशन की तरफ जा सके। और पब्लिक सेक्टर बैंक का जैसे ऑलरेडी हमारे पास नंबर ऑफ ब्रांचेस है, हमारे पास एजुकेशन लोन है, तो इसी तरह एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट करके जो यंग कस्टमर को अ कस्टमर फॉर लाइफ, हमेशा के लिए, ताकि हम जैसे हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कहते हैं, ताकि उनको एक्वायर करके और उनको एक अगर जॉब्स मिलती हैं तो नया रोजगार बनता है, बिजनेस डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए कैच दीज पीपल यंग जो है, वही हमारा मुद्दा इसमें, और इसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जितना जल्दी हम यूथ को एंगेज करेंगे उतना ही वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे, और जब उनको सेविंग के हैबिट्स पता चल जाए, एफडीज वगैरह या अदर देन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, तो उनको अलग अलग इन्वेस्टमेंट के पैटर्न पता चल जाएंगे। तो इसलिए कि स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल जर्नी उनको जितना जल्दी हम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में ले आए वो हमारे लिए भी फायदा, और बेसिकली ये जितने भी हमारे साथ जो दो दिन डिस्कशन हुआ बेसिकली वही है कि कोलैबोरेशन है और अपना कस्टमर वेलफेयर के ऊपर फोकस है और एक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी इनके ऊपर भी डिस्कशन था कि जितना जितना सेफ बैंकिंग हम इसको करेंगे, तो डाटा एनालिटिक्स की बातें भी थी। तो ये सारे जितने भी मुद्दे आइडियाज हैं इनको अब फॉर्मली करके जो हाई कमेटी उसके आगे प्रेजेंट करके आगे ले जाया जाएगा।
1: दूसरे दिन के इस कॉन्फ्रेंस में जो चर्चा हुई थी वो जो थीम थी उसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वैल्यू चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को लेकर बात हुई, और साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात की गई। खासतौर पर ये वो कर्ज होते हैं जिसके तहत किसानों को, छोटे कारोबारियों को और कमजोर वर्ग को कर्ज दिया जाता है। तो आप आज के दौर में

0: इस तरह के कर्ज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखते हैं जो आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्रेंस के बाद बैंक दूर कर सकते हैं?
1: तो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग में वो ये कि जो हम लोन वगैरह देते हैं उसका, फिर अभी एनपीए तो काफ़ी हमारा रिजॉल्व हो गया,
0: जी
1: जो 14.6 से 0.39 आ गया। अब प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग हो गया, एग्रीकल्चर फार्मिंग, उसमें बेसिकली रिकवरी और क्रेडिट मॉनिटरिंग का ज़्यादा फोकस रहता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में इसका भी फोकस भी गया कि एसेट क्वालिटी तो इम्प्रूव हुई है हमारी सब्सटेंशली, और एसेट क्वालिटी को फर्दर अब ये हमारा कि फोकस ज़्यादा कि नंबर और टारगेट पर नहीं होना चाहिए कि कितने लोन करने हैं हमें, क्वालिटी लोन होने चाहिए ताकि जिस पर्पज़ और फिर फॉलो अप रिकवरी और मॉनिटरिंग, जो सबसे जो मेन रीजन रहता है कि एनपी के हो जाते हैं कि हम लोन तो दे देते हैं बट उसके बाद मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं हो पाती। तो इसी कॉन्फ्रेंस का ये कि इसको और लोगों को, और ये नहीं कि जब किसान या जो भी प्राइवेट सेक्टर अप्रोच करे तो बैंक को भी टाइम टू टाइम असेसमेंट करना पड़ेगा कि कितना कब कब उसको लोन चाहिए या आगे उसको फर्दर ग्रोथ करना है। तो रोल काफी चेंज होने वाला है बैंकिंग का, जो क्रेडिट मॉनिटरिंग था कि एनपी को अब एक बार कम हो गया ये नहीं कि दोबारा हो जाए, तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए फॉलो अप और थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच उसमें लानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच लानी पड़ेगी, बैंकिंग काफी बदल गई है। तो अश्विनी जी आपसे ये समझना चाहेंगे, इसी सवाल का एक एक्सटेंशन कहें तो, सरकार ने बैंकों से कहा है कि कर्ज देने के अपने लक्ष्य में किसी भी तरह की कमी ना रहने दे, तो इसे सुनिश्चित करने की अगर हम बात करें तो बैंक अपने अंदर क्या बदलाव करेंगे, क्योंकि ब्रांच पहले से है, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है, अब एक सिर्फ अप्रोच को बदलने की जरूरत है, तो वहां क्या बदलाव आप देखते हैं होगा आने वाले दिनों में?
2: आपने सिर्फ लोन ही नहीं देना, लोन देने के बाद उसकी फॉलोअप प्रॉपर यूज हो रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट आ रही है, रिकवरी है, वो चीजें भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए टारगेट ज्यादा ना फिक्स करके उसको इनिशिएट करके कि भी हाँ भाई ज्यादातर लोगों तक वो पहुंचे, वो एक बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस, मुझे लगता है जैसे आपने एक हाउसिंग लोन के लिए या कार लोन के लिए कुछ अलग अलग ब्रांचेस स्पेसिफिक बना दी, वैसे इनके लिए आपको स्पेसिफिक ब्रांचेस और उस तरह का जो स्टाफ है वो भी रखना पड़ेगा। अब आप एक देखिए, आज गोल्ड लोन कितना पॉपुलर है, गोल्ड लोन बैंक भी करना चाहते हैं, आप उसके लिए स्पेसिफिक ब्रांचें बना दीजिए, तो उससे क्या होगा, वो उस ब्रांच के अंदर उसका जो उसको स्कैन करने का कि गोल्ड ओरिजिनल है वो भी रहेगा, गोल्ड को सिक्योरिटी के तरीके से भी। तो यानी हर, अब एग्रीकल्चर जो लोन है वो हर ब्रांच में तो नहीं हो सकता, तो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको उस तरह की वर्क फोर्स भी एडिशनल डालनी पड़ेगी अगर वहाँ आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते, तो वो एक बहुत जरूरी है। और दूसरा, आप जैसे डिपॉजिट की बात, मोबिलाइजेशन की गई, हम यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आज यंगस्टर की आदत क्या है, बाय टुडे पे टुमारो, तो वो डिपॉजिट की बात ही नहीं सोचता। तो आपको डिपॉजिट का कोई ऐसा अट्रैक्टिव प्लान लाना पड़ेगा ताकि वो अट्रैक्ट हो, पुराने एफडी और सेविंग से वो आपके पास, और डिपॉजिट के बिना बैंकिंग नहीं हो सकती भाई, आपके पास अगर फंड्स नहीं है तो आप फाइनेंस कहाँ से करो। तो आपको जो डिपॉजिट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी उन जेंजी के अकॉर्डिंगली आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आप वो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं।
0: जी, और एक जो क्रेडिट कार्ड को लेकर के और एक क्रेडिट व्यवस्था को लेकर के भी खास अहम चर्चा हुई है, एक थीम थी, उसको लेकर आपका अश्विनी जी क्या कहना है कि वो कितना जरूरी रहेगा आज के माहौल में, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो?
2: उनकी एक सोच है बाय टुडे पे टुमारो, तो वो उनके लिए क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब बैंकों के लिए भी, क्योंकि वो एक टारगेट है उनके लिए, लेकिन उसके अंदर भी आपको देखना पड़ेगा कि वो उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हैं और उसकी रिपेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो बहुत सारे बैंकों का जो एनपीए है या वो क्रेडिट के कार्ड के कारण ही है, क्योंकि वो उस तरह उसकी आप सर्विस नहीं कर पाते उसको देने से पहले, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, अब नए भी फिर आप ले आएंगे, तो क्रेडिट कार्ड क्योंकि वो विदाउट एनी सिक्योर लोन नहीं है वो, तो उसको आप किसको दे रहे हैं। अब आप देखिए कि मेट्रो स्टेशन पर भी क्रेडिट कार्ड बांट रहे होते हैं, अरे भाई उसकी क्रेडिबिलिटी तो हो कि भाई वो पे कर सके, जितनी उसकी लिमिट बना रहे हो उसकी सैलरी तो इतनी हो, तो उसको भी आपको सारी चीजों को फोकस करके उसको जो है प्रमोट और करने की जरूरत है,
0: यानी कस्टमर स्पेसिफिक लिमिट और इन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए उसको दिया जाएगा, तो एक तरह से एनपीए पे कहें काम।
2: हाँ भाई, सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड हमने इतने दे दिए, आप किन को दे रहे हो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।
0: बिल्कुल, आंकड़े बढ़ाने से बात नहीं बनेगी। नरेंद्र जी, जिस तरह से डिजिटल व्यवस्था तेजी से बढ़ रही है बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ ही साथ साइबर फ्रॉड भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है, तो ग्राहकों को और उनके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या लगता है बैंकों की तरफ से किन नए प्रयासों की जरूरत है?
1: नहीं, ऑलरेडी इसमें काफी बैंकों ने भी, इवन गवर्नमेंट में भी, और काफी अवेयरनेस है, और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस, इवन आरबीआई का भी आपने देखा, आरबीआई कहता है उनके वेबसाइट में, और इवन डिजिटली, तो क्योंकि

0: आपकी बात सही है कि एक तरह हम कह रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, यूपीए बढ़ रहा है, पर उधर से साइबर फ्रॉड भी बढ़ रहे हैं और तरह तरह के फ्रॉड आ रहे हैं, लाइक हमने फिशिंग है, विशिंग, ईमेल से भी ओटीपी आ गया, तो अवेयरनेस का काफी बैंक्स भी, हर बैंक अपने देखा गया, आईआईबी में हमने अभी रिसेंटली एक बैंक का ट्रेनिंग किया, तो उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग से पहले 15 मिनट एक साइबर के ऊपर कि टाइप्स ऑफ साइबर, डूज एंड डोंट, कि कैसे, तो कस्टमर अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट, डिजिटल रेस्ट जैसे आपने देखा कि आजकल काफी, तो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर प्लस अपना गवर्नमेंट की हेल्पलाइन है, I4C इंटरनेशनल अपना कोऑर्डिनेशन सेंटर है, 1930 पे कॉल करके, बट वही है कि जितना अवेयरनेस लाएंगे, जितना लोगों को, अब ओटीपी के ऊपर काफी हुआ, तो अब लोगों को ओटीपी समझेंगे कि नहीं करना, बट कई बार फिशिंग ईमेल आ जाता है या कहीं मिक्स करके कोई मैसेज आ गया, तो टाइम टू टाइम हर फोरम में, इवन बैंक्स अपनी मीटिंग्स में कस्टमर अवेयरनेस, इवन फ्रंटलाइन स्टाफ को भी बोलेगी हर तरह के अवेयरनेस लाए, बिकॉज जब तक हम साइबर फ्रॉड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिजिटल का जो हमारा बेनिफिट हो रहा है वो नुकसान में है, तो इसलिए काफी बैंक्स, गवर्नमेंट, इवन साइबर, हर पुलिस स्टेशन भी, साइबर पुलिस स्टेशन भी जहाँ पे हेल्प है, कॉल कर सकते हैं आप इमीडिएटली, आप जो वेबसाइट है हेल्पलाइन साइबर सिक्योरिटी की 1930 और ये www.cyber, तो साइबर सुरक्षा कवच में वहां जाके अपना आधार कार्ड और नंबर नोट कीजिए, और जो भी आपका कोई स्कैम या फेसबुक या जो भी इंस्टाग्राम हैक हुआ है, तो इसमें आजकल काफी फास्टली, और ये कि आपको जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतना जल्दी उसका समाधान मिल रहा है।
1: तो अश्विनी जी, आम ग्राहकों को इसमें किस तरह से भागीदारी देनी चाहिए कि वो एक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए साइबर ट्रैप में ना आए?
2: ग्राहकों को तो निश्चित रूप से क्या है कि जो जो गाइडलाइंस बैंक जो हैं इशू करते हैं टाइम टू टाइम, भाई किस तरह के, अब जैसे SMS है, तो SMS मतलब किसी बैंक के नाम का आया है अगर, और उसके आगे S लगाए तो ही वो जेन्युइन बैंक का मैसेज है, अदरवाइज अगर उसमें लास्ट एक S अल्फाबेट नहीं है तो वो नहीं है। दूसरा, उसकी जो वेबसाइट है उस पे भी आप जाते हो या मेल है, bank.in बैंकों की आज एक ऑथेंटिकेटेड मेल है, उसके अलावा किसी को नहीं, कहीं से भी फोन आता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कोई मैसेज आता है विदाउट एस आप उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, तो ही बच सकते हैं। उसके साथ साथ बैंकों को भी डाटा सिक्योरिटी के लिए अभी बहुत सारी चीजें RBI कर रहा है, म्यूल हंटर उन्होंने एक ऐप बना दिया, लेकिन वो म्यूल हंटर ऐप तब काम करता है जब वो फ्रॉड हो चुका होता है, उससे पहले वो अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो एक ऑर्डिनरी अकाउंट है, वो कब म्यूल अकाउंट बनता है जब फ्रॉड और उसमें पैसा आ जाता है, तो उसको भी जो बैंकों का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी और जो है अपग्रेड करने की जरूरत है कि भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो फ्रिक्वेंटली हो रही है, क्योंकि ब्रांच में बैठा, कई बार लोग कहते हैं कि ब्रांच मैनेजर जिम्मेवार है, ब्रांच मैनेजर को पता ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ सेंट्रल सर्वर से जो ट्रांजैक्शन है वो मूव होती हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा उसको आपको अवेयरनेस चाहिए कि वो आपके पास वो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे स्टाफ चाहिए। अब बैंक में क्या है कि बैंक में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनको भी आप जनरल इम्प्लाई की तरह ट्रांसफर कर देते हो, जो एक ट्रेंड होता है, तो कम से कम जो टेक्नोलॉजी और के साथ लोग हैं वो रेगुलर उस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में रहें, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो काम आ सके, उनको जनरल बैंकर इम्प्लाई मत समझिए, तभी जाके आप कर सकते हैं, नहीं तो नए नए लोगों को लाते रहेंगे, क्योंकि आप उसको आउटसोर्स भी नहीं कर सकते। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो, और दूसरा ये जो सारी चीजें आई है, जो बात वहां पर हुई है बहुत अच्छी है, और जब ये हाई पावर कमेटी बनेगी तो मेरा एक सुझाव है, हाई पावर कमेटी को अलग अलग ग्राउंड रियलिटी के लोगों से बात करके उसके अंदर बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी भी जानना उस कमेटी के लिए बहुत जरूरी है।
1: नरेंद्र जी, 2 दिन की बैठक में 7 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो अब इन चर्चाओं को जमीन पर लागू करने के लिए अगला कदम बैंकों की तरफ से, सरकार की तरफ से क्या होगा?
0: सरकार का यही मैंने बताया कि जो जितने भी डिस्कशन हुए, तो जैसे FFM ने बोला कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे इकट्ठा होगा उसी सारे मुद्दों को एक कंसोलिडेट करके, जो अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी, जो हमारा बेसिकली इन 7 दिनों का जो अब निचोड़ देखें, तो बेसिकली वही है कि टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट के ऊपर बात हुई, कस्टमर सेंट्रिसिटी क्या रहेगा, कि अल्टीमेटली देखो डिजिटल हो या साइबर सिक्योरिटी से बचाना, तो मेनली कस्टमर सेंट्रिसिटी और कस्टमर इंप्रूवमेंट के ऊपर ही, तो कोलैबोरेशन मैसेज है यहाँ पे कॉमन मैसेज की IT और डिजिटल ये सबको एक, और मेनली डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, तो जैसे अश्विनी सर ने बोला कि बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है उसी के बेस पे, और यूथ बैंकिंग को जो हम ऐड करेंगे तो उससे हमारा जो एक नया वेव उसमें आ जाएगा, और बट अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन यही उठेगा कि पब्लिक सेक्टर नंबर ऑफ ब्रांचेज है, उनका स्केल काफी बड़ा है, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो ये कि अब

0: लार्जर बैलेंस शीट्स के ऊपर तो फोकस अब धीरे धीरे हमारा मूव हो रहा है, तो और बैंक्स को थोड़ा एजाइल होना पड़ेगा, थोड़ा डिजिटल के साथ सेफ एंड सिक्योर। और नेक्स्ट जो इंडिया का नेक्स्ट फेस ऑफ ग्रोथ इसी के ऊपर है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें बड़े बैंक बनाने हैं विद बेस्ट कस्टमर सर्विस, बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट, तो आई थिंक ये नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जो भी यहाँ पे दो दिन के डिस्कशन हुए हाई पावर कमेटी के लिए ऐसा मटेरियल बनेगा। और जैसे रश्मि सर ने कहा कि डाउन द लाइन रियलिटी से जरूर जुड़ी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आम कस्टमर होता है वहां तक उसको बेनिफिट नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो बैंकर कस्टमर के पास पहुंचता है, मतलब डोरस्टेप बैंकिंग है, तो अब वहां पब्लिक सेक्टर बैंक में भी थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि वेट करना कि कस्टमर ब्रांच में आए, तो हम एज अ बैंकर ऑल्सो वी कैन कस्टमर को वहां पे अवेयरनेस है और ऑन द स्पॉट डेमोन्स्ट्रेट करके चीजें बतानी ज्यादा जरूरी होंगी।
1: लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि हालांकि निजी बैंक की तरफ से भी अच्छा काम हो रहा है और सरकारी बैंक की तरफ से, लेकिन सरकारी बैंक का जब दायरा बढ़ेगा तो लोगों का बैंकिंग व्यवस्था की तरफ भरोसा भी और ज्यादा मजबूत होगा, ये भी इस पहल के जरिए देखने को मिलेगा?
0: हाँ देखिए दोनों ही, क्योंकि पब्लिक सेक्टर सरकारी बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इसमें, और प्राइवेट सेक्टर ने जो एक नया यंग जनरेशन और इनके प्रोडक्ट्स, और क्योंकि वहां पे है कि स्टाफ भी यंग है कस्टमर भी यंग है, तो एक माइंडसेट और वो बात होती है। बट आई थिंक दोनों को मिलकर ही प्राइवेट सेक्टर बैंक तो रहे ही है, क्योंकि जितने भी हमारे सरकारी बैंक है 100 साल 118 साल कोई 120, तो वो तो हमारा रहेगा, बट जब दोनों साथ में काम करेंगे तो नेचुरली ग्रोथ तो उसमें आएगा बैंकिंग में।
1: एक अहम बदलाव अगर हम बात करें इस कॉन्फ्रेंस के बाद में, तो क्या बैंकिंग सेवा में किस तरह का बदलाव हमें दिखेगा आने वाले दिनों में?
0: बदलाव देखिए अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का काफी मुद्दा इसमें रहा, क्योंकि डिजिटली जितना अब हम डाटा एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, तो अभी ये है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अब रुकेगा नहीं ये, क्योंकि अभी अगर 20 साल पहले देखा जाए तो मैनुअल बैंकिंग से हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो डिजिटल है तो फिर यंग जनरेशन है, तो अगर उस दोनों को देखा जाए तो डिजिटल बैंकिंग अब धीरे धीरे बढ़ेगी, और उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते, इसलिए साइबर सिक्योरिटी जो डिफरेंट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ईमेल क्वेश्चनर है, अवेयरनेस है, तो डिजिटल तो हमारा फ्यूचर है। इवन फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी एक लास्ट कॉन्फ्रेंस में बोला था कि भाई फ्यूचर इज मनी इज नाउ डिजिटल ही है, उसके बैक नहीं जा सकते हम, तो सीबीडीटी है या डिजिटल करेंसी या आरटीजीएस, यही हमारे ऐसे है जो अब डायरेक्टली धीरे धीरे बैंकिंग का बेस बनेंगे।
1: और श्री जी 2047 तक सरकार भारत को एक विकसित देश बनाने की बात कर रही है, तो इस लक्ष्य में आप सरकारी बैंकों की सबसे बड़ी भूमिका क्या देखते हैं?
2: देखिए सरकारी बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि सरकारी बैंक जो है उनका एक जो कस्टमर बेस है वो भी एक वाइड है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास को जो है सर्व करते हैं, तो यहाँ पर और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उसके अंदर मैं बार बार इसलिए ये कहता हूँ कि अब जैसे आप कह रहे हैं कि यूथ को अट्रैक्ट करना है 2 अक्टूबर से कर रहा है, तो अब यूथ को अप्रोच करने के लिए वैसा ही माइंडसेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, उस प्रोडक्ट के साथ जाएंगे, उस झील के साथ जाएंगे जो उनसे बात कर सकता है, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। उसके लिए वैसा आपका माइंडसेट चाहिए और वैसे ही आपके पास वर्क फोर्स भी चाहिए।
1: नंदा जी, जो एक नए तरह के वर्क फोर्स और नए स्वरूप की बात की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या नए प्रोडक्ट्स बैंक लेकर के आ सकते हैं? क्योंकि आप लोगों ने एक लंबा दौर देखा है बैंकिंग व्यवस्था में बदलाव का। पहले बैंक सिर्फ कैश जमा करने और देने का काम करते थे, फिर वहां पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की भी एंट्री होती है, और अब उसका स्वरूप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है क्या नए तरह के प्रोडक्ट, किस तरह के प्रोडक्ट्स दिखाई दे सकते हैं जो लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो?
0: देखिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस पर आरबीआई देखे तो हमारे वो ट्रेडिशनल वही है, सेविंग है, करंट है या फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, बट अभी जो यूथ जो अगेन उसमें इंटरेस्टेड नहीं है यंग जनरेशन, क्योंकि डिपॉजिट में अगर हम 3-4% की बात करें या 6-7% की, तो वो फिर यंग जनरेशन रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकते, तो इसलिए मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्ट में जाते हैं, तो वहां पे इनको अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, बैंक्स कई बैंक्स ने टाइप भी किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड हो गए आपके, यूलिप प्रोडक्ट या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जहाँ की थोड़ा सा रिस्क है, बट उसके साथ जो यंग जनरेशन है या जो नया कस्टमर हमारा जो बैंकिंग में आएगा, उनको थोड़ा सा मार्केट के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करने का, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट, तो बेसिकली न्यू प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, जैसे यूनिट लिंक इंश्योरेंस या एफडी के साथ है, या आप जैसे रेकरिंग डिपॉजिट की जगह अब सिप्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, हर महीने आप 1000 करते हैं, वो मार्केट के उतार चढ़ाव देखते रहे अल्टीमेटली, तो ये है कि अब जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है बैंक

कस्टमर भी यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डिपॉजिट पे अब कस्टमर कम होते जा रहे हैं बिकॉज लोग म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट या यूनिट लिंक इंश्योरेंस या इन चीजों के ऊपर. तो यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे, कॉम्बो प्रोडक्ट जिसे कह सकते हैं, जैसे अब जनरल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, PPF वगैरह. तो अब हर तरह का उसमें एक फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बनाना पड़ेगा. अब जो आज का जो बैंकर है वो खाली बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा. तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनना पड़ेगा यंग जिन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे

0: बैंकर नहीं है, अब कस्टमर के साथ वेल्थ क्रिएशन है कि अगर 1 लाख रुपया देता है तो उसको कैसे डिवाइड करेगा। तो अब थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानर के रूप में बैंकर को बनना पड़ेगा यंग जिन पीपल को, क्योंकि जब जैसे जैसे एज यंग होते हैं तो लोग रिस्क है, उसके बाद फिर हमारे पास पेंशन प्लान है। तो एक बार जो कस्टमर अकाउंट खोलता है, यंग जनरेशन एजुकेशन लोन से लेकर सैलरी अकाउंट से धीरे धीरे फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, तो इन्हीं कॉम्बो प्रोडक्ट्स को ऐसा बनाना पड़ेगा जो अट्रैक्टिव हों या जिनको उनको लगे कि यस उनके बैंक के साथ जुड़ा रहेगा तो आगे उसको। और बेसिकली अगेन अगेन पब्लिक सेक्टर बैंक नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे पास काफी हैं, हमारा रीच काफी है, तो इन्हीं को देखते हुए अगर ट्रस्ट है बैंक के ऊपर है और हमारा रीच है तो मॉडर्न बैंकिंग का कि ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंस्टीट्यूशन बन सकता है। और यही हमारा 2017 का मुद्दा भी है कि हमें टॉप ग्लोबल इंस्टीट्यूट बैंक्स बनाने।
1: और एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ये भी चाहेंगे कि एक तरह से फाइनेंशियल हिस्ट्री भी एक यंग एज से देश के लोगों की तैयार होने जा रही है, तो उससे किस तरह के फायदे लोगों को मिलेंगे?
0: फायदे तो देखिए, जितना जल्दी अगर हम बैंकिंग से जुड़ते हैं, जितना जल्दी हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतना ही फायदा होता है। तो इसीलिए मैडम ने बोला कि सीता मैम ने कि हम कॉलेजेस में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों के हैबिट्स बनाएंगे, सेविंग्स वगैरह होगा, तो धीरे धीरे उनका बैंकिंग इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो इसी ये नए प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस डिजिटल है और थ्रू डाटा एनालिटिक्स हम जो क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हैं, तो इन सबको इकट्ठा लेके चलेंगे तो आई थिंक हमारा डिपॉजिट भी बढ़ेंगे और एक जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन और सभी के जितने सभी का खाता हो, जितने लोग बैंकिंग में आएंगे और उतने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे।
1: अश्विनी जी, आपसे भी एक सवाल का जल्दी से जवाब चाहेंगे कि अगर इस कॉन्फ्लुएंस का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा बताना हो जो आम लोगों, युवाओं और किसानों के लिए सीधे फायदेमंद हो तो वो क्या होगा?
2: वो ये है कि बैंकिंग को 2047 में किस रूप में हम देखना चाहते हैं, मतलब वो सभी जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे यूथ है, चाहे एग्रीकल्चर है, ट्रेडर है, एमएसएमई है, सबकी इन्वॉल्वमेंट चाहिए और सबको सर्व करने वाला बैंक चाहिए। तो वो दोनों तरफ से है, मतलब वैसा ही आपको कस्टमर बेस चाहिए और वैसा ही ये चाहिए।
1: बिल्कुल, तो अब देखना होगा सरकारी बैंक या तमाम बैंकिंग व्यवस्था इन चीजों को किस तरह से अमलीजामा पहनाती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे सार्वजनिक बैंकों का आधुनिकीकरण, युवा ऋण और डिजिटल विस्तार पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान के जोनल प्रमुख और वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र कुमार भसीन और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम।

कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म दिल का रिश्ता से। आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की। समीर की रचना है, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: It video, reel, documentary, podcast or vlog and upload it on the MyWaves platform. Entries will be judged on authenticity, creativity, storytelling, technical quality and community impact. Exciting prizes await. 50,000 rupees at the district level, 2 lakh rupees at the UT level and 5 lakh rupees at the national level. Celebrate your roots. Inspire the nation. Gems of India. Because every district has a story worth telling.
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सरगम। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

अब सुनते हैं इंग्लिश बाबू देसी मैम फिल्म का एक गीत। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की, धुन बनाई है निखिल।

श्रोताओं, चलते चलते अब हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में अगले 7 दिनों तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि आज से लेकर 22 अगस्त 2026 तक अंडमान तथा निकोबार तट के आसपास खराब मौसम रहने की संभावना है। हवा की गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी तथा यह बढ़कर 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अतः मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि आज से 22 अगस्त तक समुद्र में ना जाएं। ये था मौसम का हाल। इस समय रात्रि के 10:31 होने वाले हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा यहीं पर समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह के 29वीं तिथि, तदनुसार 20 अगस्त सन 2026, सुबह के समय 5:28 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं।

0: सुबह के समय 5:30 हुए हैं। श्रोताओं, सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए ये अनमोल विचार।
1: जीवन में अच्छे मूल्य हमारी सबसे बड़ी पहचान होते हैं। ईमानदारी, सम्मान, दया, अनुशासन और दूसरों की मदद करने की भावना हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। धन और सफलता जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार और मूल्य ही हमारे व्यक्तित्व को सच्ची सुंदरता देते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे मूल्यों को अपनाएं और अपनी आचरण से दूसरों के लिए उदाहरण बने।
0: अभी आपने सुना ये अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। सबसे पहले लीजिए सुनिए ये मातृ वंदना।